0: Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
4: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
5: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
6: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
7: एक्सक्यूज मी, It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
14: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
15: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
18: कश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क।
19: हेलो डैलस की जनता, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। अभी एक पिज्ज़ा खाते खाते मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही सकती हूँ यार, कोई बात नहीं चलेगा, एक स्लाइस खाते खाते। यू गाइज आर लिसनिंग टू हिप्पी द हिप्पी ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM। यस, इट इज़ द टाइम ऑफ द इवनिंग, एन इवनिंग इन डैलस। दैट्स राइट गाइज, आज हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत सारे गाने वाने सुनेंगे। आज फनेशिया के ऑफिस में बड़ा ही कोई अमेजिंग चीज़ हो रहा था। द एक्टर फ्रॉम बाहुबली वॉज हियर एंड आई वॉज सुपर सुपर एक्साइटेड। मुझे पता नहीं, मतलब आई डेंट नो ही वॉज हियर इन टाउन, बट वन आई केम एंड आई वॉज यार आज तो बड़े सारे लोग हैं ऑफिस में, क्या हो रहा है लाइफ में? देन दे टोल्ड मी, कहता है अच्छा उसकी खुशी में हमें भी थोड़ा फ्री का खाना मिल गया, बिकॉज हु डज नॉट लाइक फ्री का खाना, राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड।

सब चीज सॉर्ट आउट हो जाती है. वो नहीं, आपने कहावत सुनी, बूंद बूंद से घड़ा ही भरता है ना, या ओशन भरता है, जो भी है, आप जिसको, आपको जो भरना है आप वो भरो, लेकिन पहले सीपीए सुधीर पाई को कॉल करो. माई टाइम एक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाई हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ईदर थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सोच रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. विजिट माई टाइम एक्विटी डॉट कॉम और कॉल 4697021272. सो डोंट वेट, स्टार्ट अर्ली. इफ यू स्टार्ट इन योर 20s, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी वे अहेड ऑफ समवन who starts contributing $1,000 every month at the age of 40. Even if you start with $100 at the age of 20, you're going to be so much ahead. So start early and ask someone for help if you want to, but you should.

तो गाइज मैं बार बार बोल के थक जाऊंगी फिर भी आप लोग नहीं समझोगे. वो ये है कि इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग अर्ली. इट्स ऑल अबाउट द टाइम, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी और हाउ मच यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर रिटायरमेंट और योर फ्यूचर. इट्स ऑल अबाउट हाउ अर्ली यू स्टार्ट इट. येस ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई एंड प्ले द कैचअप गेम, बट इफ यू स्टार्ट अर्ली लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल देन तो अपने आप

0: Alright guys, this next song goes out to Rafi and Shafi. भाई टेक्निकली दिस सॉन्ग शुड ऑल्सो गो आउट टू मार्विन जी जो अभी इसके पहले यहाँ पे थे. हम मेरे शो से पहले उनका शो चल रहा था क्योंकि आई एम श्योर वो चंडीगढ़ से हैं तो उन्हें ये गाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा. लेकिन अगर आपको घर में घर बनाना है चंडीगढ़ में, विच आई हेयर इज़ अ वेरी पीसफुल सिटी, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक लाइक अ वेकेशन होम. वहाँ पे पोल्यूशन भी कम है, पता है.
1: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर.
2: Oh my God, this is original.

कई मुझे कई बार लगता है कि लोग नए गाने बनाना भूल गए हैं क्या. आई थिंक दे ऑल नीड टू गो टू म्यूजिक स्कूल लाइक मी, सो दे कैन लर्न सम म्यूजिक थ्योरी एंड लर्न हाउ टू मेक गुड सॉन्ग्स. ये गाना मैंने पहले नहीं कभी सुना था चंडीगढ़ में, लेकिन दिस ऑल्सो फील्स लाइक इट इज़ ए कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. मैं तो तेरे नाल नचना, आई जस्ट वॉन्ट टू डांस विद यू, इट्स द सेम ट्यून. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ऋषि रिच वाला जो गाना था, जो बहुत पुराना गाना है, आई'ल एक्चुअली प्ले इट फॉर यू. इट वॉज मेड इन द अर्ली 2000s. आई डोंट नो इफ दैट वॉज अ कॉपी ऑफ समथिंग और नॉट, बट इट वॉज, आई डोंट नो अबाउट इट. तो गाइज, यू डू नो दैट प्रभु देवा इज कमिंग टू डैलस ऑन 1st of August. आपको पता है ना, हम लोग इतनी बार बोल चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गाइज टिकट्स बहुत जल्दी सेल हो रही है, तो प्लीज गो एंड बाय द टिकट्स. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप ब्रिंग्स इंडियाज माइकली जैक्सनी, नो माइकल जैक्सन, नॉट माइकली जैक्सनी, वो तो मैं हूँ, प्रभु देवा लाइव टू DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गोटलिएब, सोनल भदौड़िया, अलेक्जेंडर नोअल, हरिनी नीलकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघनाथपति. अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट सैटरडे 1st August को है, शाम के 7:30 बजे है, एट द टेक्सस ट्रस्ट सी यू थिएटर ग्रैंड प्रेरी. बुक योर टिकट्स नाउ, कॉल 2482-333-3828. और अगर आपको व्हाट्सएप करके टिकट्स नहीं लेने एंड यू डोंट नो इफ दैट्स प्रीटी रिलायबल और नॉट, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रीटी रिलायबल. आई नो इट फील्स रियल वियर्ड टू गो टू व्हाट्सएप एंड बी लाइक कैन आई प्लीज हैव टिकट्स, देन यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन टू फन एशियाज वेबसाइट और फन एशियाज एनी ऑफ द सोशल मीडिया चैनल्स लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक, एंड यू कैन ऑल्सो बाय द टिकट्स फ्रॉम देयर डायरेक्टली. ठीक है, तो आप ये इंजॉय करिए ये वाला सॉन्ग, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रभु देवा ट्रैक्स दैट ही इज बीन फीचर्ड ऑन.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: Kyun?
4: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: Achha, to seedha wahi le chalo.
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
4: Your new destination has arrived.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
1: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
9: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं.
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं.
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं.
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
1: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
20: सुन ली आपने बात उमर ख्वाजा जी की. अभी उन लोगों ने उन्होंने एड बोला था कि देयर पर्पस इज टू मेक श्योर दैट यू गेट मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. ओके, इफ यू हैव बीन अफेक्टेड बाय द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, थैंकफुली आई हैव नॉट हैड एनी कार एक्सीडेंट्स दिस टाइम. हाउएवर 2 years back और एक्चुअली 4 years back टू बी स्पेसिफिक, आई हैड कार एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर ऑल्सो ड्यूरिंग द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. Some nonsense happened, okay? We're trying not to cuss over there. But, you know what I'm saying? If you got in a car accident during the retrograde, especially with all the construction and everything happening everywhere, then please call Omar Khwaja. Agar aap kisi bhi fall incident mein bhi fas gaye, then also you need to call attorney Omar Khwaja. He will handle your legal battle. While aap apni mental health pe dhyan dijiye, aap apni physical health pe dhyan dijiye, baaki insurance company ke saath ladai chadai, उनको करने दीजिए. ठीक है, आपको कॉम्पेंसेशन मिलने की पूरी संभावना है अगर अटर्नी ओमर ख्वाजा साथ में है. खुद जाके लड़ाई करोगे तो शायद कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इसीलिए कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. वेल, आई डोंट हैव एनी ट्रैफिक अपडेट्स फॉर यू. हाउएवर, बी केयरफुल, देर आर सो मेनी रोड ब्लॉक्स एवरीवेयर इन DFW अंटिल 2nd of August. Until 2nd of August. And this next song is also featuring Prabhu Deva. I mean, this is from his movie, Humse Hai Mukabla. But this is a request because somebody called me up and he said he likes this song better than Urvashi Urvashi. Honestly, I like this one too. Iski bassline bahut sahi hai yaar.

हाय गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वो चंडीगढ़ वाला जो गाना था, उसका जो मुझे लगा कॉपी किया हुआ मेलोडी था, तो दी ओरिजिनल मेलोडी, आई एम गोना ओरिजिनल मेलोडी, आई डोंट इवन नो इफ इट्स एन ओरिजिनल नॉट, बट ऑनेस्टली गाइस, दिस इज व्हाट आई नो एज द फर्स्ट वन दैट हैड दैट मेलोडी. सो आई एम गोना प्ले विद यू. दिस इज डांस विद यू बाय द ऋषि रिच प्रोजेक्ट फीचरिंग जे शॉन एंड जगी डी. दे वर दी थ्री बॉयज, पंजाबी बॉयज फ्रॉम यूके लंडन. And you know, back in the early 2000s, I was in high school. I think I was just graduating high school. Yeah, I was in 11th standard. I don't even remember at this point. But these guys had just come up with this modern Hindi slash Punjabi hip hop rap sound, and it was so current that even Bollywood started inviting these singers. And there were so many songs. Kangana was one. Kala Chashma bhi usi time pe aaya tha. All of these tunes were coming out then. So here is Dance With You by Jay Sean and Rishi Rich Project.

भाइयों, सबसे गंदी फीलिंग पता है कौन सी होती है? कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अमेरिका आके सेटल हुए हो, अपना वीजा वगैरह मैनेज किया है, एंड यू आर वर्किंग योर रेयर एंड ऑफ, एंड यू आर फिगरिंग आउट हाउ टू लिव लाइफ, खुद खाना पकाना, खुद घर साफ करना, खुद लॉन्ड्री करना, देर इज नो बाई एंड देर इज नो ड्राइवर एंड देर इज नथिंग एल्स एंड वी आर ऑल इमिग्रेंट्स, सो आई अंडरस्टैंड इट. लेकिन वो सब इतनी मेहनत वगैरह करने के बाद, पूरी जॉब करने के बाद, मेरी जैसे 14 14 घंटे काम करने के बाद, उसके बाद जब आप पैसे कमाते हो, बड़ा अच्छा लगता है ना. लेकिन उसके बाद जब साल के एंड में, जब अप्रैल में जब टैक्सेस भरने पड़ते हैं, और जो वो 30% नियरली 30% का जो टैक्स देना पड़ता है ना एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर, तब वहीं पे सबकी टाई टाई फिश हो जाती है कि ओ माई गॉड, इतने सारे पैसे जो मैंने इतनी मेहनत करके कमाए सारे चले गए. मेरे पिछले साल तो ऐसे ही हुआ. आई सेव्ड सो मच मनी बाय यू नो कटिंग कॉस्ट. आई वाज लाइक नो, आई एम गोना हैव एन इमरजेंसी फंड दिस ईयर, आई एम गोना बी लाइक दिस बॉस गर्ल एंड सेव ऑल दिस मनी एंड एवरीथिंग, बट मोर देन हाफ ऑफ इट वेंट इन माई टैक्सेस. तो गाइज, इफ यू एवर गेट इन टू अ सिचुएशन लाइक दैट, कॉल ए जी फिन टैक्स. आई एम गोना कॉल दम दिस ईयर बिकॉज माई अकाउंटेंट इज नॉट दैट ग्रेट. ओके, ए जी फिन टैक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन अमेरिका. अगर आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं, या फिर इस्टेब्लिश बिजनेस है, दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशंस दैट इज टेलर टू योर नीड्स. चाहे आपको बुक कीपिंग करनी है, पेरोल अकाउंटिंग करनी है, बैंकिंग क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन करनी है, प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, सो मेनी वर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, दे हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड रेडी फॉर द फ्यूचर. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस. ए जी फिनटैक्स इज योर पार्टनर इन बिल्डिंग ए स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com. Today, the song, next song goes out to Vivek. Vivek, thank you for introducing me to the song. It sounds like a vibe. This is Yaar Anmule by Shari Maan. I hope I'm saying it correctly.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: जीनी हुकम मेरे आका,
5: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
3: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
3: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, Harbhai Super.

friends, guys, this is Ippy the Hippie and you are listening to Funasia Radio 104.9 FM. Guys, जैसे मैंने आपको promise किया है और मैं दोबारा से करूँगी कि मैं आपके लिए कभी भी cringe music नहीं बजाऊँगी, okay? Sometimes when I have to go off of my station, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे ही ब्रेक हुआ, I had to run to my car to grab my charger cable because my phone was literally dying. However, by the time I came back, I realized, भाई ये cringe music कहाँ से बच गया? ऑटो प्ले पे. कई बार हमें ना ऑटो प्ले पे लगा के चले जाना होता है, तो उसमें मेरी चॉइस नहीं होती गाने की, लेकिन मेरी चॉइस जब होती है, आई विल ऑलवेज प्ले द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर यू बिकॉज आई केयर अबाउट यू. ओके, तो गाइज आपको पता है अभी कितने बजे हैं? इट इज 8:09. तो 8:09 को आपको पता है क्या होता है? यू नो इट. That's right, it is our giveaway round. ठीक है, giveaway round आज का क्या है? आज का giveaway round है is from the same as yesterday, San Idli Restaurant. You can win any dosa of your choice with one filter coffee at San's Idli Vegetarian Restaurant and Indian Food. They are 100% pure vegetarian and they are made with fresh, authentic flavors, like everyone says. Yes, crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian favorites, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain-friendly options. Visit San Idli Veg Restaurant at Highway 121 and Custer Junction. ठीक है, तो गाइज द गेम इज रियली सिंपल. आई एम लाइक आई सेड, आई एम गोना सिलेक्ट टू विनर्स दिस वीक. ओके, दिस इज अ टू पार्ट क्वेश्चन और आई विल प्ले यू अ सॉन्ग एंड यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. दिस माइट बी अ लिटिल बिट हार्ड, ओके, बिकॉज मैं चुन चुन के गाने लाती हूँ नहीं तो गेम मजेदार कैसे बनेगा. That's right. So, I will give you one hint, okay? Before we even start playing the song. The song features from a movie which has Diya Mirza, R. Madhavan and Saif Ali Khan. Okay? So, it's a two-part question. You can, whoever gets the first call, you can answer only one question. And then the second question is going to be answered by the second caller. Okay? So, let's get started. So, पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉलीवुड कॉपी सॉन्ग एंड यू माइट गेट इट, यू माइट नॉट गेट इट. अगर आपको नहीं आया शुरू में, देन मैं आपको एक हिंट भी दे दूंगी. ओके, वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, यू आर ऑन द रेडियो, थैंक यू फॉर कॉलिंग.

are back. You are still listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. भाई मैंने ऑन एयर एक गड़बड़ कर दी. मैंने आप सबको अपनी एज बता दी जो लड़कियों को नहीं बतानी चाहिए. यू नो गर्ल्स नेवर टॉक अबाउट देयर एज. आफ्टर आई टर्न 30 आई मेड अ रूल फॉर माई सेल्फ दैट एवरी ईयर आई एम ओनली गोना सेलिब्रेट माई 21st बर्थडे. सो टेक्निकली एवरी ईयर आई डू एज बट माई बर्थडे इज ऑलवेज द 21st बर्थडे एंड आई डोंट एज अ डे आफ्टर दैट. एनीवेज गाइज आगे बढ़ते हुए हे दैट वॉज माई फर्स्ट एनीवेज इन दिस होल टाइम. अगर मैंने इसे ज़्यादा बोला तो मुझे बता देना. तो आगे बढ़ते हुए हैं गाइज. लाइफ में बहुत कुछ चलता है ठीक है और इतना सब चलता रहता है दैट समटाइम्स यू नो यू लूज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड मेंटल स्टेबिलिटी एंड कामनेस एंड पीस एंड ऑल ऑफ दैट. तो इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंग्शियस अबाउट वर्क और एनीथिंग एल्स लाइक रिलेशनशिप ट्रबल्स और समथिंग मे बी यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीडे लाइफ. सो ओशो यूनिवर्सल इज डूइंग अ मेडिटेशन रिट्रीट फ्रॉम 31st July टू August 2nd एट ओशो केवलिया धाम इन डेनिसन एंड दे हैव मेडिटेशन ग्रुप्स म्यूजिक सेलिब्रेशन डीप साइलेंस इनर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी प्रेम मैत्रेय. अगर आप बिगिनर हैं या फिर एक्सपीरियंस मेडिटेटर हैं देन यू नो इट डजेंट मैटर एवरीबडी इज वेलकम. WhatsApp 214-395-6757. That's 214-395-6757. And your journey to inner peace begins here. We're about to go into a break in just about 2 minutes. Stick around because today is the last day that I'm here with you this week. And I will be only here for an hour and a half. So stick around. We've got lots of more amazing music to go for you. And yeah, lots of other announcements too.

सॉकर मैच फीफा का गाना लाइक ओले ओले, जैसे वो ब्रिटिश वाली टीम नहीं करती, इंग्लैंड की टीम ओले ओले वो बोलते हैं ना, वैसे इट साउंडेड लाइक दैट. नहीं गाइस, आगे बढ़ते हुए, आपका हेल्थ अपॉइंटमेंट कितना लंबा होता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट? गो टू प्राइमरी हेल्थ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया आज. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में योर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. आप सिर्फ पेशेंट नहीं है, यू आर ट्रीटेड लाइक फैमिली एंड दे रियली केयर अबाउट द हेल्थ हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी. 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स फॉर योर एनुअल फिजिकल, वेदर यू आर लुकिंग फॉर एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड सो मेनी मोर थिंग्स. ऑल इज अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे 214-666-6259. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे. भाई हेल्थ से याद आया कि एंड इट इज टोटली नॉट रिलेटेड टू हेल्थ बट मे बी समबडी इज मेंटल हेल्थ फॉर श्योर. टुडे आई सॉ दिस न्यूज़ दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड अ रूलिंग, बिकॉज यू नो वी ऑल नो ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टोरीज दैट देर इज़ दिस वन गाय जिसकी इंडिया में एक शादी हो चुकी है, फिर वो अब्रॉड जाके सेटल हो जाता है, अब्रॉड में वहाँ पे किसी गोरी बंदी से शादी कर लेता है या फिर किसी ग्रीन कार्ड वाली होल्डर से शादी कर लेता है, फिर इंडिया में अपनी बीवी को भूल जाता है, लेकिन इंडिया में उसकी बीवी भी है, बच्चे भी है, उसका ध्यान में कुछ नहीं रखता. देन द बीवी, समटाइम्स द वाइफ्स इन इंडिया, दे गेट सो त्रस्त, दे फाइल अ केस. लेकिन पहले ये लोग करते थे क्या, दीज गाइज, नॉट द नाइस गाइज, यू नो, दे वुड गो अब्रॉड, दे वुड सेटल देयर, हैव अ अनदर वाइफ, अनदर इंटायर फैमिली देयर एंड फॉरगेट अबाउट देयर वाइफ एंड किड एट होम. एंड इंडिया में इवन इफ शी फाइल्स अ केस अगेंस्ट हिम, देट बी लाइक, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी, मैं तो अब्रॉड हूँ, अब्रॉड में इंडिया का रूल नहीं चलता है, वट एवर, यू कॉन्ट रियली फोर्स मी टू गिव यू एनी चाइल्ड सपोर्ट या फिर एनी एलिमनी और एनी थिंग लाइक दैट. तो गाइज, अपेरेंटली हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट विथ अ रूलिंग दैट इफ अ सिचुएशन लाइक दैट हैपन्स एंड इफ अ वुमन फाइल्स अ केस अगेंस्ट दैट गाय, देन द इंडियन गवर्नमेंट कैन कॉन्टैक्ट द इंटरपोल. येस, यू गॉट इट, यू हर्ड दैट राइट, दे कैन कॉन्टैक्ट द इंटरपोल टू ब्रिंग दैट मैन बैक टू इंडिया सो ही कैन पे हिज ड्यूज. दैट इज क्वाइट ए मोन्यूमेंटस रूलिंग, यू नो, कि there is no shortcut out of this now, there is no get away from this, so if don't do stuff like that. And also it's not nice to cheat another woman or a man for that matter, it applies to both genders, girl and guy, both of the genders. I feel like don't have a person in India and then come here and have another secondary life and pretend like everything is fun and games. Aisa nahi chalta yaar, be loyal, be true to your morals, and cuz you know you've heard that saying, right? भगवान आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स में देते हो, तो वट एवर यू एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, गॉड गिव्स दैट एनर्जी बैक टू यू. सो थिंक अबाउट दैट फॉर अ लिटिल बिट एंड डोंट वेट फॉर द इंटरपोल टू कम इन कॉन्टैक्ट यू.

0: एहसास क्यों? एक तरफा तराजू
1: क्या लू?
0: तेरी हंसी मेरे आंसू
1: क्या लू?
0: घुट घुट की क्यों सांस लू
1: क्या लू?
0: उसे देगा क्या हिसाब?
2: तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना। तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना। तेरा

बोलो आजादी, ये दैट्स राइट गाइस, आजादी हम सभी को चाहिए, बिकॉज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोना प्ले यू इज फ्रॉम दिस बैंड द लोकल ट्रेन एट 117 मिलियन व्यूज. द सॉन्ग इज कॉल्ड छूलो फ्रॉम द एल्बम आलस का पेड़. आलस का पेड़ अगर कौन सा होता, मेरे ख्याल से बनियान ट्री होता अगर आलस का पेड़ होता तो. बनियान है नहीं, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? माय रेगुलर लिसनर्स नो दिस जोक.

सनम ओ जिगर, तुम कहो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर कोई

Guys, before I log off for today, thank you everyone for joining me. This is your bestie, Ippy the Hippie, on Fun Asia Radio 104.9 FM. I am about to clock out and I'm about to say goodbye to you. But before that, I will play two more amazing songs before I sign off for today. Lekin main aapse phir milungi on Monday now. So don't worry, I will be back right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए वंडरफुल वीकेंड एंड डोंट फॉरगेट 1 अगस्त को दो शोज है, सो यू डिसाइड विच वन यू वांट टू गो टू, माइन और प्रभु देवास. ऑफ कोर्स इफ यू आर अ डांसर गो देयर, बट इफ यू आर अ सिंगर और लाइक अ म्यूजिक लवर देन कम टू माइन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
3: Hi this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings Dallas Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu and trust us this is not your regular slice Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
6: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
5: सच में सब संभालेंगे
6: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन partner.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
6: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
5: सच में सब संभालेंगे
6: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन partner.

0: 104.9 FM Funisha. Funisha. Fun Fana Fun Done.
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह।
3: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
4: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
3: अरे

0: 나는
1: love you.
2: I love you.
3: 안 흔들어 보내야 할 거라.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
1: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
2: व्हाट?
3: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
4: हेलो गाइज, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फन एशिया रेडियो।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा

0: जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: That's right. Pump it up.

बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: रोते काय को हम

0: one is your one. Oh, 4.9 FM, Dallas ka deal.
1: जिद शर्दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा?
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं जिंदी करूंगा हॉकी।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुककीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: I am Rahat Fateh Ali Khan, and you are listening Radio Fun Asia.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Pain of God.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, jagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
1: Hi, Dallas. This is Ranbir Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lights, Mike, Bollywood, Fanasia, Fanasia.
1: Praveen, what is this? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर. वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: मन के। Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
1: Hi this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio
2: It's tunes in all of Dallas Fun Asia Radio 104.9 FM

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

0: भोली,
1: बोल बचन की वाणी,
0: शाणी,
1: बोल बचन का कतरा,
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा,
0: झांसा।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Funasia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
4: Sara din bit jaye, sari raat jagaye.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.
7: Ladies and gentlemen, let's get our program started on this lovely Friday morning. It's the 24th of July. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विथ आवर प्रोग्राम। वेलकम टू द शो।

0: Some messages now from our sponsors.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
10: तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
13: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
12: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
13: वेट, व्हाट?
14: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
15: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
14: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से.
0: astroramji.com. रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 through 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स.

0: और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ना पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे, हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, हाँ? उन्हें दूध देना बंद कर दे।
2: सपने

0: मिलता संदेश, लखनऊ जाने वाली ट्रेन छूटेगा?
1: नहीं।
0: पर यार उसे हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ, शाबाश।

0: इस बिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हस हस रंग दे, नस हस

0: financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: अरे यार, घर मिल गया।
9: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
9: सीरियसली? अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
10: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
19: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more

0: पिज्जास खाते हैं।
1: What?
2: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
3: Hello Texas परिवार, क्या आपको पता है there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call कीजिए Kamna को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
4: ये तारा वो तारा हर तारा.
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
6: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
7: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
9: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
10: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
11: Moving on with our program, I do also have a giveaway for you. We have an interview with a guest that's coming up. We'll have the world news, so this is going to be a packed rest of the hour here. So first, let's get you this chance to win $10 off on a billing of $50 only when you dine in at Chandigarh Bites. Now, Chandigarh Bites is located off of McDermott Drive in Allen. You'll enjoy, if you go there at lunchtime, you enjoy their special thali. Monday to Friday, they have that. They'll have it today. Exciting new dishes rotating daily for lunch only. But remember, you have to dine in there to get $10 off your $50 dine-in bill. Not for takeout, dine-in only. So what do you have to do? You have to tell me the name of the movie from which I've taken this track. And the first person who gives me the right answer will be the winner. Let me give you the number here in the studios to call me. 972-235-5555. Here's the track.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
1: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
0: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
3: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

0: यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मीठू, और हमारी गपशप के बीच में जो जरूरी बातें चलती रहती हैं वो आती रहनी चाहिए, राइट? बिकॉज देर आर बिजनेसेस हु गो बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड हु गो बाय द स्प्रेड ऑफ द वर्ड दैट द सर्विसेज दैट दे ब्रिंग फॉर यू. तो जो ये बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एज अ कम्युनिटी टू स्टे यूनाइटेड ऑन द बिजनेसेस आर पीपल आर ब्रिंगिंग, राइट? सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज, स्पेशली जब ऐसे यू नो लोग हों जो कि अपने सर्विस के लिए जाने जाते हैं, तो येस, गेट इन टच विथ देम. सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज, H1B, F1, L1 या कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे अगर आप हो, और अगर आपको US परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो देर आर वेज दैट यू कैन गेट इट. मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट दे कैन सर्टनली लुक इन टू योर केस एंड हेल्प यू इन डूइंग एग्जैक्टली दैट. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, चाहे वो EB-5 इन्वेस्टर वीजाज के बारे में हो, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज के बारे में हो, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन के बारे में हो, और जैसा कि मैंने कहा US सिटीजनशिप के बारे में हो. इन सभी के बारे में यू कैन गेट डिटेल्स, you know, as per your case, and you can figure out the way from there, and they will help you all the way, all along. They are going to be with you if you take their services. Email kare info@seemamehtalawfirm.com if you think you need their services. Do get in touch with them. Once again, seemamehtalawoffices.com is the website. You know, there are plenty of businesses that our community is providing. चलिए कुछ और बिजनेसेस के बारे में सुनते हैं राइट हियर.
1: Moments don't fade, they echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: जीनी हुकम मेरी अखा, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
4: मिराज लाउंज, चलिए मेरी अखा, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
4: नो प्रॉब्लम अखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद.

0: पुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: जीत उनकी होती है जिनकी नज़र सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
7: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
12: Tracks that put you on the right track.

धीरे धीरे ना आज का जो टेम्परेचर है हमारे लिए बढ़ने वाला है, बट नॉन द लेस इट के नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट इट इज़ बेटर देन ट्यूजडे एंड येस्टरडे, राइट? तो आज का टेम्परेचर हमारा 100 के आसपास जाएगा, डबल डिजिट्स में ही रहेगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट देन यू नो मेनी लोकेशंस दैट विल रिमेन अंडर 100 टुडे. वो ह्यूमिडिटी सर्च के कारण वो सारा कुछ किस्सा हीट इंडेक्स पे आ जाता है एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 107 फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. तो हीट एडवाइजरी इज इन इफेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सिस अंटिल 8 PM. एक नोटेबल डिफरेंस जो देख रहे हैं वो है क्लाउड कवर का, जिससे ना ऐसे इस तरह के गाने अपने आप ही ऑटोमेटिकली मुझे याद आ रहे हैं. हालांकि मेरे पास कोई विंडो नहीं है स्टूडियो में, लेकिन वो जिस माहौल में ड्राइव करके आई हूँ ना, दैट वेदर दैट आई हैव एब्जॉर्ब कम्प्लीटली, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द सॉन्ग्स मैचिंग द वेदर टुडे व्हेन यू आर इनसाइड द कार. क्योंकि बाहर निकलते ही वो गर्मी का एहसास आपको होगा, क्योंकि देर इज गोइंग टू बी सनशाइन, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस विच इज एक्सपेक्टेड फॉर द आफ्टरनून. एंड दिस ब्रीफ ब्रेक जो हमें मिल रहा है ट्रिपल डिजिट से, वो वापस से यार वीकेंड को आने वाला है. तो फ्राइडे का आनंद आप लो जो अंदर से फील हो रहा है, अंदर से यानी कि कार या घर के अंदर से, यू नो एसी कंडीशंस में रह के वो जो बाहर का जो वेदर लग रहा है कि बहुत हसीन होगा, वो थोड़ा सा और आप इंजॉय कर लो. इवन हॉटर वेदर इज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड रीबिल्ड नेक्स्ट वीक एज हाईज अप्रोच 105 बाय द मिड वीक नेक्स्ट वीक. एंड दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, अभी फिलहाल कुछ 82 डिग्रीज के आसपास एंड इट इज the double digits that we are going to stay, lekin heat advisory is in play from noon till 8 PM. Do remember that. And tomorrow's high around 101 and Sunday mein ek aur degree add kar le, Monday ko ek aur degree add kar le, bas yahi silsila chalne wala hai. It is Texas, ladies and gentlemen. Kahan bach ke jayenge aap? Ye hai Gapshap Gali with me too.

हमारी ना हर रोज ही कुछ बातें चलती रहती हैं गूगल के साथ। ये मानते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ सवाल हर रोज का हमारा होता ही है। अभी आते आते मैंने गूगल से सवाल किया, क्योंकि लो फ्यूल दिखा रहा था मेरी गाड़ी में। मैं ना मतलब हमेशा मैंने टाइमली भरवा लिया है, ऑलमोस्ट टाइमली एक्चुअली भरवा लिया है। तो मैंने सोचा कि वंस फॉर ऑल यार जान ही लूँ कि मेरे कार में कितनी कैपेसिटी है, जब वो लो फ्यूल दिखाता है उसके बाद कितना रिजर्व में है और कितने माइल चलेगा। तो उससे इतना मतलब क्या कहना चाहिए, इतना एक सॉलिड रेंज मिला है कि आई डोंट नो व्हाट टू थिंक अबाउट दैट। क्योंकि इट्स सेड कि कार्स यूजुअली हैव 1.5 to 3 gallons ऑफ रिजर्व इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इतना उनके पास रिजर्व में रहता है हर गाड़ी में, और 30 to 50 miles जा सकता है। अब 30 to 50 miles में ना बहुत लंबा रेंज है, तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि मुझे जाके शो के बाद गैस भरवा लेना चाहिए। क्या कहते हैं आप?

0: You are listening to Funisha Radio 104.9 FM. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. और इनकी जो brand new location है, second Frisco location है, वो है लोनॉक्सी मेडिकल, founded by Dr. मनदीप आचार्य. और ये आपके लिए एक ही छत के नीचे लेकर आते हैं various services, primary care से लेकर urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services. So get in touch with them if you are interested. It is very, very important that you speak to them. और वहां जाके आप इनके इनके यू नो ऑफिस को चेकआउट करें, देखें व्हाट यू फील अबाउट इट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ्स, एंड टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज एग्जैक्टली दैट.
1: कहां गया, कहां रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहां है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना हो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: Tracks that put you on the right track.

नीरज घाईवान की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी ये फिल्म, और ये फिल्म थी जिसका नाम है मसान, जो कि आज ही के दिन 2015 में रिलीज हुई थी. एंड इट क्रिएटेड ए वेव इन द इंडस्ट्री. विकी कौशल का हुनर सबने पहली बार देखा, और ऐसा देखा कि वो बस छा ही गए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा. एंड हिज सिनेमैटिक करियर एक अलग ही लेवल पे उसके बाद तो चली गई, उसका वो तो एक अपनी ही कहानी है. लेकिन ये जर्नी को जो ओवरनाइट नहीं थी यार, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें ऐसा एक रोल मिला था, और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें ये स्टारडम मिला है. सो यस, ही टोटली डिजर्व्स इट. और अपनी रोल को ऑथेंटिक रखने के लिए वाराणसी के लोकल एक वो लड़के का जो किरदार था एट द क्रिमेशन घाट, वो दिखाने के लिए ही वेंट टू बनारस. एंड वहाँ पे उन्होंने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, उन्होंने लोकल कल्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, घाट्स पर घंटों समय बिताकर वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की, और लोकल जो डायलेक्ट है उसके बारे में उन्होंने बहुत सीखा वहाँ. एकदम जो एक नेचुरल उनका जो कैरेक्टर उभर के आया था ना, इट वॉज फॉर ऑल दोज रीजंस एंड द फैक्ट दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. उनकी जो वो रॉ ऑथेंटिक हार्ट ब्रेकिंग पोर्ट्रेयल थी इस कैरेक्टर की, वो कमाल की थी. एंड दैट्स द फिल्म मसान, लेडीज एंड जेंटलमैन. फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, इट वॉज रिचा चड्ढा एंड श्वेता त्रिपाठी एंड संजय मिश्रा ऑल्सो विथ हिम इन दिस मूवी, और सब ने अपना रोल बहुत अच्छा किया था. एंड दैट्स मसान, लेडीज एंड जेंटलमैन, विच वॉज नॉट अ कमर्शियल हिट, बट वर्ड ऑफ माउथ के कारण आज की तारीख में इट इज़ अ कल्ट क्लासिक फॉर श्योर. एंड दैट्स ए मूवी दैट रिलीज ऑन दिस डे. ये है सेगमेंट जहाँ पे आज के दिन रिलीज हुई कुछ फिल्म्स के गाने हम आपको सुनवाते हैं. तो द नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रिविलेज ऑफ प्लेइंग टू बैक टू बैक सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी, क्योंकि एक तो ये तय है कि सुशांत सिंह राजपूत हैं इसमें, और इसीलिए इट फेल्ट राइट टू प्ले कपल ऑफ गुड सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म. और ये उनकी आखिरी फिल्म थी. इट वॉज लाइक अ ट्रिब्यूट टू लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत व्हेन इट रिलीज. एंड व्यूअरशिप इसकी इतनी तगड़ी थी, इसमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मतलब क्या ही नाम उभर रहे थे वो इंडस्ट्री में. एंड एवरीबडी लव्ड हिज द नेक्स्ट नेक्स्ट डोर बॉय काइंड ऑफ अ लुक दैट ही हैड, एंड दैट जेन्युइननेस दैट ही हैड, दैट सिंसेरिटी इन हिज कैरेक्टर्स दैट ही प्लेड, वो सारी चीज़ें बहुत कमाल की थी. और इसीलिए इस फिल्म का 24 घंटे में ही 94 मिलियन व्यूज़ मिलना इसका ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार वॉज ऑब्वियसली नोन एंड अंडरस्टैंडेबल. पीपल लव्ड हिम. तो उसी फिल्म का ये एक बहुत एक हार्ट वार्मिंग सा गाना है, पहले ये और उसके बाद वो गाना जिसमें वो एक शॉट में उन्होंने जो डांस किया सुशांत सिंह राजपूत, व्हाट अ डांसर ही वॉज. तो बस यही सारी बातें बतानी थी. ये फिल्म जो कि रिलीज हुई थी 24 जुलाई 2020, इट्स दिल बेचारा.

24 जुलाई 2020 दिल बेचारा के रिलीज के बाद एक और रिलीज पे जाना चाहती हूँ, विच केम आउट ऑन दिस डे 24th ऑफ जुलाई 1998 को रिलीज हुआ था. और ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी चली थी बॉक्स ऑफिस पे. इट वॉज अ सुपर हिट एंड वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स ऑफ 1998. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फिल्म जो कि अनऑफिशियल बॉलीवुड अडेप्टेशन था ऑफ 1995 हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंच किस, वो मेग रायन और केविन वाली जो फिल्म थी, केविन क्लाइन वाली जो फिल्म थी वो. और इस बॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीस बाजमी ने. तो ऑब्वियसली वो जो एक देसी एलिमेंट था वो लेकर आए, विथ द शूटिंग लोकेशंस बीइंग इन इंडिया, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब, हैदराबाद एंड ऑल्सो इन सेशल्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, अजय देवगन एंड काजोल आर रियल लाइफ जोड़ी दैट अपीयर्ड इन दिस फिल्म एंड rest as they say is history. And I absolutely love this film. I mean the song particularly by Remo and Jasprinder Narula, Pyar Toh Hona Hi Tha.

0: कुछ इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक जो यहाँ प्ले हो रहा है, मैंने जो एक लाइनअप किया है आप लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ कि ये आप इसे पहचाने तो फिर हम प्ले करते हैं आपके लिए। अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपको मिलता है डी वाइब रेस्टोरेंट की तरफ से दिस फ्री आइटम। डी वाइब रेस्टोरेंट जो कि फूडिस्तान के अंदर है और फूडिस्तान जो कि ऑबरी में है, आप ज़रूर जाएँ क्योंकि फूडिस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, फिर वो पानी पूरी का ठेला नहीं, एक स्टेशन अच्छा खासा साफ सुथरा अरेंजमेंट एंड गन्ने का जूस, यार इट ऑल रिमाइंड्स मी ऑफ समर्स लेडीज एंड जेंटलमैन एंड दैट एंड मच मोर, क्योंकि ये अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस भी आपको वहीं मिलेगा फूडिस्तान के अंदर। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज डी वाइब रेस्टोरेंट, जहां से आपको मिलने वाला है एक फ्री डिश राइट नाउ। इफ यू कैन टेल मी विच सॉन्ग दिस प्रील्यूड इज फ्रॉम, ठीक है, इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक है, ये हिंट तो मैंने आपको दे दिया, आगे आप पहचानो ये गाना, और अगर ये गाना नहीं पहचाना तो ये गाना बजेगा ही नहीं, कुछ और बजेगा फिर, ठीक है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है, गेट सेट गो। बस इतना ही प्ले होगा आपके लिए और आपको गेस करना है दैट सॉन्ग, सिंपल, 972-235-5555। मैं जानना चाहती हूँ कि जो गाने मैं इतने पैशन के साथ प्ले कर रही हूँ, ये गाने आपको पता भी हैं कि नहीं। ऑलराइट, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग फैंटास्टिक। मुझे आप ये बताइए कि डी वाइब रेस्टोरेंट से आपने जीता है इस महीने।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कैन यू हियर मी?
1: Yes, I can hear you.
0: So, first of all, have you won from D-Vibe restaurant before? I just wanted to quick.
1: No.
0: All right, no. Perfect. So, one check on my box here. The second would be, are you ready to sing?
1: I will try.
0: All right, second check. And mere khayal se, you have qualified to participate in this one. Bataiye, ga ke sunaiye actually.
1: Okay, that's Aliza for song.
0: Yes, absolutely correct. Yes. And the song is?
1: Sunere sajaniya, tere bin duniya.
0: Aise jaise har subahar
1: hai. Jiya nahi chahe re, tere bin haaye re.
0: Mujhko tumse pyaar hai. I will absolutely give it to you. What's your name, ma'am?
1: My name is Noreen.
0: Noreen, this is definitely going to you. Aapne totally deserve kiya hai from D-Vibe Restaurant. A special dish aapke naam kar di gayi hai. Just hold the line. I'll take all your information. And okay. For my listeners, this is Ali Zafar's voice. And I don't know, late 90s was when it released. Aur hum bade diwane ho gaye the is gaane ke.

0: not the system, but it's love for money.
1: And it's love for Ali Zafar that brought this song to all of you from the 90s to the 2026 that we are on. ये जो time travel है ना, ये केवल music से possible है. और इसीलिए इस साल जो एक release हुआ है, वो एक independent music मैं लेकर आना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. And congratulations, Noreen, for winning from D Vibe Restaurant this special dish आपके नाम जो हमने कर दिया है. फूडिस्तान के अंदर है. And फूडिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को ये बताया जाए कि भाई आपके लिए ये provision है कि आप वहां पे वहां से डिलीवर करवा सकते हो. अगर $30 से ज्यादा आपका ऑर्डर है तो भाई विद इन 5 miles रेडियस बिल्कुल मुफ्त में डिलीवरी होने वाली है फूडिस्तान से. कमाल की बात है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऑबरी में रहती तो क्या ही मजा आता. सीरियसली, यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. लेट्स गेट यू दिस नेक्स्ट वन राइट हियर और उसके बाद अपनी कुछ बातचीत शुरू करें.

इस प्रीत के चरखे से मुझे एक गाना याद आ गया जिसके ना एक बड़ा क्यूट सा एक हुक स्टेप था, एंड दैट वाज बिटवीन सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति डिमरी. डू यू नो विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट? नो, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग फॉर अ गिव अवे, क्योंकि गिव अवे आपके लिए अगले सेगमेंट में या उसके बाद वाले, एक्चुअली उसके बाद वाले सेगमेंट में, विच इज कॉल्ड ताज़ा एंड न्यू. बाय द वे, इट इज एक्चुअली ए ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट दैट आई हैव स्टार्टेड दिस वीक आफ्टर फीफा एंडेड. मुझे ये होमवर्क मैंने ओवर द वीकेंड किया कि भाई क्या लेके आऊं फीफा के इतने एक्साइटमेंट के बाद. आई वॉन्टेड टू ब्रिंग समथिंग दैट वुड कनेक्ट टू मी एज अ ले मैन, एंड मैं कुछ आप लोगों के साथ नया ताज़ा शेयर कर पाऊं जिससे मैं भी कुछ सीख रही हूं, आप भी कुछ, आपको भी कुछ पता चल रहा है, वैसा कुछ लेकर आऊं. तो बस इसी के चलते ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट में हम आपके लिए everything that is taza and new in terms of tech world, tech industry, ya to fir you know, related to music, related to movie, related to food, related to any industry jahan se mujhe koi khabar mili hai Instagram ke zariye ya otherwise kisi ne mujhe forward kiya ho ya aisa kuch aur mere radar mein aaya ho, aisi kuch cheeze as a layman main aap logon ke liye lekar aati hu, and we can talk about that later kyunki usme abhi waqt hai, kyunki hamari baat cheet शुरू होने वाली अबाउट दिस वन टॉपिक विच इज आई थिंक एवरीबडीज कंसर्न. व्हेन आई से एवरीबडीज, इट इज एक्चुअली एवरीबडीज कंसर्न इंक्लूडिंग द नॉन देसी कम्युनिटी एज वेल. तो वो क्या चीज है? वो है हमारे देसी कम्युनिटी का सोशल एटिकेट. इसी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, एंड डिस्कशन जिसमें कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. इट इज ऑलवेज अबाउट टॉपिक्स दैट कनेक्ट टू यू, कनेक्ट टू मी, और इसीलिए मैं ये टॉपिक्स लेकर आती हूँ बिटवीन 11 टू 12. पहले गाना हो जाए फिर बातें.

This part of my show is brought to you by AG FinTags. Anil Grandhi and his team are bringing this financial and tax services for you, for the dynamic business owners, ladies and gentlemen. And very proud to say that one of the fastest growing tax and accounting firms in the US that they are, it is AG FinTags, and the website is agfintax.com. Agar aap individual ya startup ke taur pe ya established business hai, in any which case, you can be helped by AG FinTags, and their team is stupendous in finding financial solutions for you, innovative financial solutions, absolutely tailor-made to your unique situations and needs. Bookkeeping se lekar payroll accounting tak, bank and credit card and reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory service. They help keep your finances absolutely bang on, organized, compliant and absolutely future ready, ladies and gentlemen. agfintax.com hai inka naam and website, and the number to call is 469-942-9888. Yes, you can save thousands of dollars by simply getting in touch with them and let them help you with your financial needs. Once again, thank you very much for tuning in. This is Gapshap Gali with Meethu, jahan pe aaj बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज के बारे में विच कनेक्ट्स यू, विच कनेक्ट्स मी, विच कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस एंड नॉन देसीज एज वेल एज आई सेड बिफोर. तो क्या है ना कि जब भी हम यूएस लैंड करते हैं और उसके बाद अपने बैग्स अनपैक करना शुरू करते हैं, एंड देन सडनली वी रियलाइज कि यार वो हमारा जो देसीपन है ना वो वहीं पे मिसिंग लगता है. कोई ठेले वाले की आवाज़ नहीं होती, कोई बर्ड्स की चहचहाट नहीं होती है यार उतनी. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बट देन दैट इज वॉट इट इज. You have come to the US और ये आपका decision रहा है, तो ये आपका, आपकी समझदारी होनी चाहिए कि social etiquettes और norms को हमें follow करना आना चाहिए, period. ये बात में आप फक्र मत करो कि भाई यहाँ आकर, US में आकर हम इंडिया के जो तौर तरीके यू नो पब्लिक प्लेसेस में दिखाते हैं वो नहीं चल सकता है भाई. द सूनर यू अंडरस्टैंड बेटर फॉर यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर कम्युनिटी, आर कम्युनिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो इसी के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ आज हमारे गपशप सेगमेंट में. वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विथ मीथू. एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आके हमारी बातचीत होगी इन द नेक्स्ट सेगमेंट. आई एम गिविंग यू अ लिटिल हेड्स अप, इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, यू आर मोस्ट वेलकम टू, इन द मोस्ट यू नो रिस्पेक्टफुल मैनर आई वुड आस्क एवरीबडी to join in, and मैं चाहती हूँ कि इस conversation के बारे में conversation हो, और इसीलिए तो ये आज चर्चा में आया है. This is गपशप गली, and this is a segment जहाँ पे हमारी गपशप होती है.

0: यहाँ पे कुछ भी एक तरफा नहीं होने वाला है. अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन हो, लाइंस विल बी ओपन फॉर यू टू गिव योर इनसाइट, योर इनपुट इन दिस गपशप सेगमेंट, जो कि अगले सेगमेंट में हम पिकअप करेंगे. एंड विल टॉक अबाउट द देसी सोशल एटिकेट्स, जो थोड़े से कहीं तो हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, उसी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए सोचा कि ये सेगमेंट किया जाए. एंड विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक पे बहुत सारी जानकारी जाएगी. करें
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो.
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
8: ये क्या होता है?
10: सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
14: What?
15: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
16: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
17: Tracks that put you on the right track.

इफ यू थॉट दैट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग रिक्रिएशन ऑफ दैट साइबो, तो मैं आपको बता दूं कि साइबो जो कि ओरिजिनली सचिन जिगर ने कॉम्पोज किया था, इसे पलाश सेन ने री इमेजिन किया फॉर दिस यू नो दिस म्यूजिक सेशंस दैट दे सैट फॉर, जहां पर जो कॉम्पोजर्स हैं ओरिजिनल सिंगर्स के साथ, ओरिजिनल सिंगर्स तो नहीं लेकिन कॉम्पोजर्स, वो आए मंच पे और उन्होंने एक दूसरे के गाने रिक्रिएट किए या कहना चाहिए री इमेजिन किए. तो ये री इमेजिनेशन थी पलाश सेन फ्रॉम यूफोरिया की फॉर सचिन जिगर सॉन्ग. तो एक सचिन जिगर का गाना जब पलाश सेन ने री इमेजिन किया तो ये मिला हमें, है ना, साइबो जो गाना था. अब जब सचिन जिगर री इमेजिन करें पलाश सेन के यूफोरिया के गाने को धूम पिचक धूम, तो वो कैसा बनेगा वो अब सुनने वाले हैं आप. और अभी जो हम बात करने वाले हैं, इट इज़ टू डू विथ समथिंग दैट इज ग्रैबिंग क्वाइट अ बिट ऑफ अटेंशन दीज डेज. तो ऐसा करो आप कि यू ग्रैब योर चाय के लिए इट इज़ टू हॉट, मेरे ख्याल से छाछ उठा लो, ठीक है ना. टर्न अप द रेडियो एंड गेट कम्फर्टेबल बिकॉज टूडे वी आर स्पिलिंग नॉट टी बट equally serious buttermilk. आज हम लोग अपनी जो है ना खुद की community के बारे में कुछ बात करने वाले हैं. We are, listen, really, मतलब ये आप offense के तरह नहीं, क्योंकि I am also very much part of it, right? So we are colorful, we are vibrant, and let's be honest, we bring so much life wherever we go, ठीक है ना. लेकिन कभी कभी इस flow में हम भूल जाते हैं कि हम US में हैं. तो आज का हमारा टॉपिक इज़ अबाउट एडजस्टिंग टू द सोशल एटिकेट्स हियर इन द US. कोई लेक्चर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, हम बस एक ऑनेस्ट फ्रेंडली चैट करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन सेलिब्रेट हु वी आर व्हाइल स्टिल बीइंग द बेस्ट नेबर्स पॉसिबल. तो आज का हमारा टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा अबाउट वॉल्यूम कंट्रोल. लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग अप आफ्टर दिस गाना.

आगे वो होगा जो हम चाहेंगे, यानी कि अगर हम अपने सोशल एटिकेट्स को थोड़ा सा सुधार लें तो सारी ये जो दिक्कतें आ रही हैं ना वो थोड़ी सी बंद हो जाएं। सबसे पहले बात करने वाली हूँ वॉल्यूम की। सोशल एटिकेट्स ऑफ आर देसी कम्युनिटी इज द टॉपिक फॉर टुडे। इफ यू वांट टू रियली जंप इन टू टॉक अबाउट इट, प्लीज फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एंड वी विल डू इट इन द मोस्ट फ्रेंडली वे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई लेक्चरबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे। कुछ ऐसी बातें जो हमारा शायद जानना या सुनना जरूरी है। सबसे पहली बात मैंने कहा ना कि वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। वी एब्सोल्युटली लव अ देसी वाइब, अ देसी एनर्जी, सॉलिड देसी एनर्जी होता है दैट फुल वॉल्यूम स्पीकर फोन कॉल्स जो हमारे होते हैं। यार भाई, वॉलमार्ट में पूरे जो आइल है उनको जानने की जरूरत नहीं कि आपकी कजिन की शादी में मेन्यू क्या है। वी हैव टू रियली मेक श्योर कि जब हम बात करें एक तो स्पीकर फोन ऑन ना करें। अगर सुनाई नहीं दे रहा है या कुछ दिक्कत है और आपको बात करनी ही है तो बाहर जाके करो, कार में जाके बैठ के करो, या ऐसे कुछ पब्लिक एरिया में हो तो स्पीकर फोन सबसे पहले तो बंद रखो। और अगर स्पीकर फोन बंद नहीं, आपकी वॉल्यूम फिर भी अगर तेज़ तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना यार बहुत जरूरी है। आई सॉ दिस वन, मैं एयरपोर्ट पे थी और यहाँ पे एक पैसेंजर, हमारे देसी पैसेंजर थे, वो इतनी जोर जोर से बात कर रहे थे और उनकी बातें मुझे तो समझ में आ रही थी एंड इट वॉज आई थिंक सम काइंड ऑफ एमरजेंसी ओनली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे लोगों को नहीं समझ में आ रही ना ये बातें, यहाँ के लोगों को या अमेरिकन को नहीं समझ में आ रही है ये बातें, तो क्या किया जाए? आप जाएं, आप रेस्ट रूम जाएं या कोई ऐसे स्पेस में जाएं जहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा ज़ोर से बात करना अफोर्ड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग टू मैनी पीपल एक्चुअली। एंड दैट आई थिंक ये मैंने भी किया था एक बार। आई रिमेम्बर एयरपोर्ट पे थी वंस अगेन एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर एंड ही वॉज नॉट एबल टू हियर मी, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैं भी एयरपोर्ट पे हूँ, बाद में आपसे बात करूंगी। बट ही वॉज गेटिंग अ लिटिल फिजिटी क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा था। एंड मैं भी थोड़ा वॉल्यूम अपना तेज करने की कोशिश कर रही थी। समटाइम्स इट इज़ अबाउट जेन्युइन सिचुएशंस दैट वी आर डूइंग इट, अदरवाइज तो भाई सच्ची में ये एक थंब रूल के तरह मान के चलो कि नहीं सुननी है लोगों को आपकी बातें यार, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखो। एंड दिस रियली गोज फॉर आर कम्युनिटी जहाँ पे आए दिन अक्सर, मतलब देसी स्टोर्स में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलता है और नॉन देसी स्टोर्स में भी देखने को मिलता है। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट वी कीप आर वॉल्यूम डाउन लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है लोअरिंग द वॉल्यूम विच हेल्प्स अस ब्लेंड इन स्मूथली विदाउट लूजिंग आर ब्यूटिफुल देसी स्पार्क, लेडीज एंड जेंटलमैन।

We are talking about, desi social etiquettes that we must be very, very mindful about. अभी एक कॉल आया और वो ऑन एयर नहीं जाना चाहते थे, बट ए टॉपिक दैट आई डिडंट हैव ऑन माई माइंड, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ये बात कही है, आई टोटली अग्री कि इसको भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है. एंड इट इज़ अबाउट स्वेट एंड द स्मेल दैट इट कैरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन. सी, वी ग्रो अप ऑन फूड दैट्स एन एब्सोल्यूट एक्सप्लोजन ऑफ लव एंड स्पाइसेस एंड सोलफुल फ्लेवर्स, वो चाहे गार्लिक से आए या अनियन से या गर्म मसाले से या मस्टर्ड ऑयल से, हमारा खाना बहुत शानदार होता है. बट लेट्स बी रियल, वॉट इनक्रेडिबली इज टेस्टी ऑन योर प्लेट इवेंचुअली फाइंड इट्स वे आउट थ्रू आवर पोर्स, करेक्ट? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, चाहे वो खाना गर्म करने को लेकर हो क्लोज स्पेसेस में, या ऑफिसेस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कैफेटेरिया में हम अपना खाना गर्म करते हैं, वो स्मेल हो या हमारे स्वेट का स्मेल. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी आर माइंडफुल अबाउट इट. ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, एक्चुअली इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप जो खाना पैक करके ले जाते हो, अगर उसमें बहुत स्ट्रांग कुछ स्मेल है, तो वो मेक श्योर करो कि आप वो घर में खाओ और वो लेके जाओ जो कि ज़्यादा स्मेली. हमारे लिए तो अरोमा है, वो खुशबू है एक्चुअली, बट फॉर दी अदर पीपल इट माइट नॉट बी दैट. सी, फॉर मी, आई एम अ बोंग. आई टेल यू, गिव यू अ वेरी देसी एग्जाम्पल टू इट. आई एम अ बोंग. हम मछली खाते हैं यार, मछली हमारे लिए मतलब क्या ही चीज़ है. और वहाँ पे हमारी एक आंटी आई थी, मेरी फ्रेंड की मॉम आई थी, और वो फिश नहीं खाती, और उस दिन मैंने बहुत सारे वेजिटेरियन आइटम्स बनाए थे, लेकिन एक फ़िश आइटम भी बनाया था, जिसके कारण वो शायद मेरे घर में उसका स्मेल रह गया था, विच मेरे लिए वॉज खुशबू, बट फॉर हर डेफिनेटली नॉट. एंड इट शी हैड अ टफ टाइम एंड आई रियलाइज दैट. एंड उसके बाद से मैं बहुत माइंडफुल रहती हूँ. तो बस यही माइंडफुल रहने की तो बात है ना. बस ये हुआ कैफेटेरिया की बात, और स्वेट की बात तो यार सिंपल सी चीज़ है यार, कि अगर आप स्वेट ज़्यादा करते हो या तो आपके स्वेट में ज़्यादा स्मेल होता है, तो आप बस इतना करो कि घर से निकलने के पहले नहा लो, या फिर अच्छे से डिओड्रेंट से अपने आप को नहला दो. दैट्स इट, दैट्स ऑल वन हैज़ टू डू. इज़न्ट इट रियली रियली सिंपल, कम टू थिंक ऑफ इट, इट इज़ ना, नहीं?

0: लिसन, आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स ऑन दिस टॉपिक, तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज ना अगले सेगमेंट में भी कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज देर इज सो मच टू टॉक अबाउट. जहां तक कि वॉल्यूम कम का सवाल है, जो थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, जो हमारी देसी कम्युनिटी को माइंडफुल रहने की जरूरत है, वो एक जगह है जहां पे बिल्कुल माइंडफुल रहने की जरूरत नहीं है, वो है कॉन्सर्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रभु देवा विल बी लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन 1st of August एट द टेक्सस ट्रस्ट क्रेडिट यूनियन थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप लेकर आ रहे हैं यार, हमारे इंडिया के माइकल जैक्सन व प्रभु देवा, तो जरूर आइएगा. पूरी की पूरी उनकी टीम आ रही है, राइट फ्रॉम लॉरेन गॉटलिब टू सोनल, एलेक्सेंडर, हरिनी, नताशा, सानवी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम फॉर दिस पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट दैट यू कैन विटनेस. और आप हमारे ना फन एशिया नेटवर्क के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल पिंड पोस्ट मिलेगा, एकदम टॉप पे टनाटन, बिल्कुल आप टिकट्स खरीद लो फॉर दिस इवेंट. मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahun.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Yaar, mere phone mein hum dono ke kitne selfies hai yaar.
13: To chal, un selfies se pizzas khate hain.
12: What?
9: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: बेटा, 95% आए?
19: हाँ मम्मी।
18: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
20: मेरा?
18: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
19: वो
20: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
21: सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
22: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
23: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
22: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
23: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
22: क्यों?
23: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
22: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
24: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
23: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
20: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
25: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।
0: चलिए बीट से बीच बीट मैच करते हैं और धड़कन से धड़कन मैच करते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में थोड़ा सा और कंटिन्यूड डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इसीलिए वैसे तो ये ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट होता है, वी विल टेक द गपशप सेगमेंट, मेक अ बिट ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ बोरोड टाइम दैट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस सेगमेंट एंड कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट, विच इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज देसी सोशल एडिकेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, शांति शांति शांति बिल्कुल बनाए रखना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम का, स्पीकर का फोन जो है, स्पीकर का वॉल्यूम वो सही रखना बहुत जरूरी है। हमारे जो बॉडी ओडर है उसके लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। हम कैफेटेरिया में किस किस्म का खाना गर्म कर रहे हैं उसमें अगर कुछ हमारे हिसाब से जो अरोमा है वो दूसरों के हिसाब से नहीं हो, ये वेरी मच पॉसिबल, राइट? एंड इट हैज बीन अ स्टोरी दैट वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स। तो ये कुछ बातें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पिछले सेगमेंट में। कुछ और फोन कॉल्स आए, उससे कुछ और बातें सामने आए, और वही कुछ बातें, और अलॉन्ग विद दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इस सेगमेंट में करने वाले हैं। एंड टॉकिंग अबाउट शांति, लेट्स टॉक अबाउट ओशो यूनिवर्सल्स बिग इवेंट, विच इज दिस मेडिटेशन रिट्रीट दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, हैपनिंग ऑन July 31st थ्रू August 2nd, लेडीज एंड जेंटलमैन, एट ओशो के वल्य धाम इन डेनिसन। एक्सपीरियंस पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक, म्यूजिक, सेलिब्रेशन, डीप साइलेंस और साथ में एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपको पूरा का पूरा एक गाइडेंस मिलेगा स्वामी प्रेम मैत्रेय से। वेदर यू आर अ बिगिनर या आप मंझे हुए मेडिटेटर हैं, आप सभी वेलकम हो टू दिस इवेंट। लिमिटेड सीट्स हैं और इसीलिए डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। कॉल और व्हाट्सएप एट 214-395-6757। वंस अगेन, इट इज 214-395-6757। दिस इज गपशप गली विद मी टू। कुछ म्यूजिक और उसके बाद कुछ और जरूरी बातें।

लिसन, एक ऐसा बर्निंग टॉपिक शुरू हुआ है कि एक के बाद एक मुझे एक्चुअली कॉल्स आते जा रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू मोर ऑफन. आई हैव बीन टोल्ड कि ये याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है. देसी सोशल एटिकेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम ध्यान रखें, ख्याल रखें कि हम कैसे इन्वायरमेंट में हैं. और मेरे ख्याल से ये ना यूनिवर्सली ट्रू है. ये केवल US में हम आए हैं एज इमिग्रेंट्स इसीलिए नहीं, बल्कि अगर हम इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ से भी आप हो, वहां पर भी ये सारी चीजें मेंटेन करना जरूरी है. पीरियड. ये सोशल एटिकेट्स हैं, ये वेरी नॉर्मल बेसिक सोशल एटिकेट्स हैं कि अगर आप बाहर निकलते हो ना घर के, तो थोड़ा सा यार कंगी वंगी कर लो. रवि साहब ने इस पे थोड़ा एम्फेसिस दिया, कंगी वंगी कर लो. थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है यार, वो बॉडी ओडर के साथ साथ ये भी जरूरी है. हालांकि उन्होंने भी जो कहा कि भाई यहाँ का जो है बड़ा कैजुअल एनवायरमेंट रहता है कि आप यू नो यू कैन ड्रेस अप वेरी कैजुअली, बट दैट डजंट मीन दैट यू लुक शैबी. लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा मूड होके, बाल वाल कोम करके निकलना, फ्लिप फ्लॉप्स नहीं, थोड़ा सा बेटर. आप घर से बाहर निकल रहे हो, बस थोड़ा सा एक वो दिमाग में रखना, क्योंकि ये जैसे कि रवि साहब ने कहा ना, इट इज नॉट वन इंडियन, इट्स यू नो दैट दे टेक, वन इंडिविजुअल दैट दे टेक इट एज द इंटायर इंडियन कम्युनिटी, दैट इज टू से द देसी कम्युनिटी. लेडीज एंड जेंटलमैन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी हो, आप पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, और कुछ लोगों के कारण बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है. एंड ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और अभी सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है, इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा ये देखने और सुनने को मिल रहा है, और जो मिलता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कितनी जगह पर कितनी चर्चा है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन टू लुक शार्प व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट. एक ना अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आता है जब आप उस तरह से तैयार होकर अच्छे से निकलते हो. सो यस, दैट एंड ऑल्सो व्हेन यू गो टू रिटेल स्टोर, टेल मी इफ यू आर गिल्टी ऑफ इट, एंड नोबडी इज जजिंग यू, बिकॉज मेनी ऑफ अस डू इट. इट्स जस्ट दैट आई एम ब्रिंगिंग इट अप ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी अदर पीपल पर्सन हु इज कॉन्शियस अबाउट यू नो सॉर्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एटिकेट्स. एंड द रिटेल एटिकेट इज कि अगर आप दुकान जा रहे हो, और अगर आप कुछ कपड़े देख रहे हो, कुछ गिर गया आपके हाथ से, तो उसे उठाओ, उसे उठा के वापस टांगना जरूरी है. अगर आप चेंजिंग रूम गए हो और वहां पे कुछ सामान लेके गए हो, मेक श्योर यू रिटर्न इट टू द लेडी हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड यू जस्ट डोंट डंप इट एंड पाइल इट in the booth itself, you know. So these are little things. अभी एक किसी ने कॉल किया था अबाउट दिस मैटर, क्योंकि वो रिटेल इंडस्ट्री में ही काम करती हैं. उन्होंने कहा कि ये केवल हमारे लोग होते हैं जो ऐसे बिखेर के चले जाते हैं, ज़्यादातर हमारे लोग होते हैं. दैट्स व्हाट शी सेड, कि जो बिखेर के चले जाते हैं, आप यहाँ के जो यू नो गोरे लोग हैं, दैट्स व्हाट शी सेड, जो गोरे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं यार, वो एक्चुअली दे मेक श्योर दैट दे clean up before they leave the place. So this is a very simple thing that we can do, isn't it? Let's try यार, क्योंकि हम अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. सिंपल सी बात, बार बार यही कहना चाहती हूँ.

थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया या ये करने कॉल किया ये बताने के लिए कि ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और ये हमें इसके बारे में अक्सर बात करनी चाहिए एंड अक्सर रिमाइंड करना चाहिए हमारी देसी कम्युनिटी को. आई टोटली अग्री कि ये बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत बार हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होती है एंड एवरीबडी सीम्स टू बी अग्रींग. तो कर कौन रहा है ये सोचने वाली बात है. और जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल अनअबैश्ड तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पे दे आर थिंकिंग यू नो कि दे टेक प्राइड इन द फैक्ट कि US में आके अपने इंडियन तौर तरीके से रह रहे हैं. इंडियन तौर तरीके ये नहीं है या देसी तौर तरीके, लेट्स पुट इट दैट वे, बिकॉज यू नो पीपल बियॉन्ड द देसी कम्युनिटी दे डोंट नो कि हम कहाँ से आते हैं. हम बांग्लादेश से हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं, वो ये नहीं जानते. वो हमें देसी कम्युनिटी की तरह ही हमें पहचानते हैं. तो वी ईच आर रिप्रेजेंटिंग आर देसी कम्युनिटी, पूरा वो ब्लैंकेट देसी कम्युनिटी मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर. तो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम हियर. वाई नॉट टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स लेडीज एंड जेंटलमैन? क्यों ना बात करूँ? क्यों नहीं बात करूँ? क्योंकि मुझे पता है कि सेप्टेम्बर में गणेश चतुर्थी आ रहा है एंड देन ऑफ कोर्स दिवाली, होली, ईद, गरबा, ये सारे फेस्टिवल्स जो हमारे आते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं ये फेस्टिवल्स. पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वो ग्रोसरी पार्किंग लॉट में या अपने नेबरहुड में एक स्ट्रीट ब्लॉक करके, कल्डिसैक पे मे बी ब्लॉक करके हम अपनी फेस्टिविटीज इंजॉय करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे हंगामे के साथ. और दिवाली पर तो पटाखे भी, यू नो, एंड वी डू इट एट नाइट बिकॉज दैट्स वेन वी डू इट इन इंडिया एज वेल, राइट? तो हम नहीं केयर करते कि शोर शराबा है. हम ये जो एक इनकन्वीनियंस जो लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने नेबरहुड के लोगों के लिए, जिनके लिए हम केयर करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा ना, दिस इज ए बेसिक एटिकेट वन हैज टू फॉलो. वो जो हमारे 911 कॉल्स और कंप्लेंट्स, नॉइस कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ तो लेफ्ट ओवर ट्रैश के लिए भी स्ट्रीट्स पे जो ये जो कंप्लेंट्स आती हैं, नॉट डन एट ऑल. यहाँ के नेबरहुड्स में स्ट्रिक्ट नॉइज ऑर्डिनेंसेज होते हैं विच वी मस्ट एंड वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो. नो इफ्स एंड बट्स अबाउट दैट. हम एज इमिग्रेंट्स आए हैं, वी हैव टू इम्बाइब एंड एब्जॉर्ब ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज मेंट फॉर एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री. अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इज वॉट कीप्स अस रूटेड टू आर कल्चर. तो अपना कल्चर सेलिब्रेट या ये करें हम, ये बहुत ज़रूरी बात है. बट रोक ब्लॉक करके ये बात कुछ समझ नहीं आती. बाय डिस्टर्बिंग आर नेबर्स ये बात हजम नहीं होती यार. द कम्युनिटी दैट यू लिव हिम, हम अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ एक फालतू का फ्रिक्शन क्यों? थोड़े से तौर तरीके चेंज करने में ही समझदारी है. देर इज सो मच ऑफ नेगेटिव नॉइज अराउंड अस. दैट इज वॉट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम ये छोटे छोटे रूल्स इग्नोर करते हैं ना, वी आर बेसिकली एम्पलीफाइंग दैट नेगेटिव नॉइज ऑन सोशल मीडिया एज वेल. क्यों करें भाई, क्यों? क्योंकि हम वो कम्युनिटी हैं जो सबके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं. नहीं, इज़न्ट इट ट्रू लेडीज एंड जेंटलमैन? और अगर ये ट्रू है तो करके दिखाते हैं ना.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त है कि एक गिव अवे दिया जाए. सिंपल सी बात है, इस सिंगर का नाम बता दें या तो दोनों सिंगर्स का नाम बता दें इस गाने में, और जीते आप रेड हॉट चिली पेपर से ईदर ड्राई चिली चिकन या तो चिली बेबी कॉर्न. लेडीज एंड जेंटलमैन, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होते अबाउट द फूड दैट इज सर्व. बहुत डिसअपॉइंटेड तो मैं बहुत नेगेटिव वर्ड बोल रही हूँ, आप हमेशा बहुत खुश होकर निकलते हो. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू गो, रेड हॉट चिली पेपर. फोर लोकेशंस दैट दे हैव, रिचर्डसन, मैकिनी, एलन एंड फ्रिस्को. तो बताइए ये जो अगला गाना है उनके दो प्लेबैक सिंगर्स का नाम, और ले जाइए. और जाने से पहले एक्चुअली आई डू वांट टू क्विकली टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड इट इज अबाउट द फेस्टिविटीज जो हम सड़कों पर लेकर आते हैं, पार्किंग लॉट्स में लेकर आते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द पीपल अराउंड. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि भाई हम अपना सेलिब्रेशन छोड़ दें, नॉट एट ऑल. The secret is just doing it the American way. Want to throw a massive party with your friends? Why not here? City website pe jao, pavilion book karo, block party permit lo aur crazy ho jao apni party mein yaar. Usse bhi acha idea ye hai ki aap apne non-desi neighbors ko bhi invite kar lo yaar and make them part of your festivities. Unhe bhi thoda biryani, gulab jamun khilao and trust me, they will love it equally. Aur agar wo participate nahi karna chahte, na kare, lekin invite to kar do. बात सिर्फ अपने कल्चर को शेयर करने की नहीं है, उसको जबरदस्ती किसी पर थोपने की है. यहाँ के रूल्स के हिसाब से अडाप्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने देसीनेस को खो दे कहीं पर, है ना. द गोल इजन टू स्टॉप बींग प्राउड इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी. बस इतनी ही बात है कि जब नए देश में आते हैं तो वहाँ के बेसिक सोशल रूल्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो करनी ही पड़ेगी. वेल, वी आर सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हार्ड वर्किंग पीपल इन दिस कंट्री, सो लेट्स मेक श्योर आर पब्लिक बिहेवियर मैचेस दैट 5-star रेपुटेशन दैट वी कैरी. आई से स्टे देसी, स्टे ऑसम लेडीज एंड जेंटलमैन. और बताइए इन इस गाने के दो सिंगर्स का नाम.

0: Say what?
1: All right, that's pretty much all the time I have with you all. Richa has won from Red Hot. Richa nahi. Ye to meri ek dusri listener thi. Kalpana has won from Red Hot Chili Pepper. Congratulations to you. Bilkul sahi. Vasundhara Das and KK ki awazein is gaane mein. And that is all the show that I have. Bahut maza aaya mujhe. Hopefully you enjoyed it as well. Up next is Rimita. And keep listening. This is RJ Me Too signing off for the week.
2: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
3: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
4: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
5: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
6: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
6: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
7: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1090 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me, it's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
4: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
11: Filmon ka maza action, drama, aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast
10: जबरदस्त परफॉर्मेंस में,
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
0: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
9: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
13: Storming into a million hearts, 104.9 FM, number one hit station.

that's exactly what should your vibe be today on a Friday afternoon. Hello, hello, hello, DFW. Technically, आज Friday the 24th है यार. 13th हमेशा होने की जरूरत नहीं है, बट टेक्निकली हम अभी भी वर्किंग आवर्स में हैं. हमारे लैपटॉप्स ऑफिस में खुले हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, लंच के प्लान्स बन रहे हैं, बॉस को लग रहा है प्रोडक्टिविटी चल रही है, लेकिन दिमाग ऑलरेडी वीकेंड के प्लान्स बना रही है लंच के साथ साथ. तो मैंने सोचा जब दिमाग ने ऑफिशियली वीकेंड डिक्लेयर कर ही दिया है तो हम भी कर देते. लाइट्स कैमरा एंड फिल्मी फ्राइडे. दिस इज आरजे रमिता और अगले दो घंटे बात होगी मूवीज की, म्यूजिक की, बॉलीवुड के नए रिलीजेस की, पुरानी यादों की. थोड़े से गेम्स खेले जाएंगे आपके साथ, थोड़ा सा बॉलीवुड को रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमारे DFW शहर में असली फिल्मी कीड़ा किसके अंदर है. तो पहले सबसे पहले ये सवाल कि अगर आपकी करेंट लाइफ का कोई टाइटल मतलब बॉलीवुड फिल्म का टाइटल हो तो वो कौन सा होगा. आपका तो पता नहीं पर मैं अपना बता देती हूँ, मेरा होगा भागम भाग.

प्यार के सिग्नल के लिए तो माहिर है आप पहचानने में, देने में, यू नो गिव एंड टेक पॉलिसीज, जो सिग्नल्स होते हैं आंखों में जिया चुराते हो जैसे, बट अपने हेल्थ के सिग्नल का उसके बारे में कभी सोचा है? जैसे कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है वो कैसे पता चलेगा? अभी आप बोलोगे कि यार ब्लड टेस्ट करवा लो, वो इसी से पता चलेगा। आई नो ब्लड टेस्ट करवा लिया आपने क्योंकि आपको लगा कि चलो मिडिल ऑफ द ईयर है, एनुअल हेल्थ चेकअप का टाइम भी आ गया तो करवा लेते हैं, बट ब्लड टेस्ट करवाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। ब्लड टेस्ट का रिजल्ट तो आ गया, आपने देख भी लिया आपके पैरामीटर्स क्या है, थोड़े नॉर्मल लेवल से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहाँ है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, बट उसके बाद क्या? हर वक्त ना आपके एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और उसके हानिकारक जो क्या बोलूँ मैं साइड इफेक्ट्स है वो पता नहीं चलते। उसको ना प्रॉपरली डिस्कस करना पड़ता है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, और इसीलिए दिस इज द टिप दैट इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। उसके बारे में आगे और भी बताऊंगी। कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM। दिस इज फिल्मी फ्राइडे विथ मी रुमिता।

0: जी नहीं जी नहीं, कहीं गुम नहीं है, आपकी कुड़ी यहीं पे है। दिस इज फिल्मी फ्राइडे ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो, जहां पे आप चर्चा हो रही थी कि आपकी लाइफ अगर एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका टाइटल या नाम क्या होता। आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड वी हैव समवन वेटेड, मैं उनसे थोड़ा वार्तालाप कर लेती हूँ। तब तक आप भी सोचिए कि आपका लाइफ और या आपकी लाइफ अगर एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका नाम होता क्या। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555, कॉल मी एंड लेट मी नो एंड आई विल मेंशन द सेम ओनली ऑन फनीशा रेडियो।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Moments don't fade, they echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो, एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
9: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
8: व्हाट?
10: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
5: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
14: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
18: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
19: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

8 minutes past 1 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Ramita with the show Filmy Friday. और अगर आप ही मेरी तरह मिलेनियल है तो आप भी इस गाने को इक्वली एंजॉय कर रहे थे जैसे कि मैं कर रही थी. आई मीन लुक एट द कॉम्बिनेशन, अलका याग्निक, कुमार शानू एंड हमारे हिमेश भाई. आई मीन हिमेश रेशमिया के अर्ली ईयर्स के गाने स्टिल दे आर, आई मीन क्या बोलूँ मैं, आई शुड टर्न देम एज क्लासिक्स फॉर मी बिकॉज क्या गाने थे यार. दीज मूवीज हमराज, प्यार किया तो डरना क्या, ऐतराज, आई मीन वेरी फ्यू टू मेंशन राइट नाउ बिकॉज ग्राफ उनका जितना जल्दी ऊपर गया उतना जल्दी ही नीचे आया, बट स्टिल हिमेश भाई इज हिमेश भाई. चलिए अगला जो गाना है आई विल बी प्लेइंग फॉर यू, और ये जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा ना, अलका याग्निक, कुमार शानू, हिमेश रेशमिया, ये तीनों कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, बट इसके साथ साथ भी और एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, जैसे कि दाल मखनी के साथ साथ नरम गरम बटरनट, या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी के साथ कोई भी, मतलब राइस आइटम ले लो, पुलाव ले लो, बिरयानी ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे आपको लगेंगे इस वीकेंड पे, क्योंकि अगले गाने के साथ जुड़ रहा है एक गिव अवे सवाल. और ये डिशेस के नाम मैंने क्यों बताए, क्योंकि यही मिलते हैं फ्लेवर लाउंज में, द फ्लेवर लाउंज विच इज लोकेटेड एट द मालाबार गोल्डन डायमंड कॉम्प्लेक्स इन फ्रिस्को. आपको सिर्फ सीधा सीधा ये बताना है कि अगला गाना कौन सी मूवी से है. यार इतने इजी सवाल और इजी जवाब, उससे भी ज्यादा क्या करूँ आपको गिव अवे देने. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी द नंबर or the name of the song that I'm playing, the film which is taken this from, or aap jeet sakte hai ek flavor lounge restaurant se koi bhi ek dish, chahe wo dal makhni ho ya dhaba style chicken curry. And remember, this is for dine-in only.

listening to 104.9 FM Funisha Radio. मैं हूँ रमिता and this is a filmy Friday on a Friday afternoon. इतनी बार मैंने वो R को roll किया है ना कि अभी normally बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. But I know you guys love Funisha, you guys love us and आप लोग सुन लोगे, समझ लोगे. This is the filmy Friday on a weekend. और weekend का सबसे important सवाल नंबर वन ये है कि खाना कहाँ खाना है. अजी खाने के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि द फ्लेवर लाउंज विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को आप जा सकते हैं. पर एक्चुअली उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है क्या देखना है. सो द वेलकम टू वॉच वेट या स्किप. दिस इज अ सेगमेंट जहां हर फ्राइडे ट्रेलर्स हमें कन्विंस करती है कि दिस इज द सिनेमैटिक इवेंट ऑफ द ईयर. और फिर मंडे को जब आपके दोस्त या कोलीग्स पूछते हैं ना कि कैसी थी तो हम बेझिझक कह देते हैं यार ओटीटी पे देख लेना, वेट कर लो थोड़ा. एंड दैट वन सेंटेंस इज द मोस्ट डेंजरस मूवी रिव्यू हमारे देसीज में. और आज भी फ्रेश मूवीज और शोज का लाइनअप है तो वीकेंड प्लान बनाने से पहले तीन चीजें जरूर चेक कर लेना. नंबर वन, स्टोरी किस टाइप की है. नंबर टू, ऑडियंस का इनिशियल रिएक्शन क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर थ्री, क्या ये आपके टाइप की मूवी है. बिकॉज हर पॉपुलर मूवी आपको पसंद आए जरूरी नहीं है और हर मूवी जिसका हाइप कम है वो बुरी हो वो भी जरूरी नहीं है. सो ट्रेलर्स देखो, मूड देखो और फिर डिसाइड करो वेदर टू वेट, वॉच या स्किप.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

0: आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो. दिस इज रमिता. और मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत देसियों ने ये नोटिस किया कि सलमान खान फिर से ट्रोल हो रहे. और क्यों हो रहे भाई? बहुत ही एक गंभीर टॉपिक पे द एंटायर नेशन इज, आई मीन इंडिया में एंटायर नेशन इज फ्यूरियस अबाउट इट. देर इज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन द जंतर मंतर. और सलमान भाई बीइंग सलमान भाई, बीइंग दैट कूल सैवेज टाइप, हैज बीन प्रोटेस्टिंग इन इट्स ओन वे. एंड हिज कमेंट और अपोज्ड, सोनम इट्स डन ब्रो, दैट हैज गॉट द हेडलाइंस और ट्रोलर्स का अटेंशन उन्होंने ग्रैब कर लिया. एंड द इंटरनेट कैन नॉट कीप काम अबाउट इट. इफ यू स्टिल डोंट नो अबाउट इट, गूगल कर लो. सलमान खान हमेशा चर्चे पे रहेंगे. चर्चे पे हमारे इस वीकेंड के रिलीजेस भी है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
7: होचो
8: होको
7: होचो
8: होको
7: होचो,
8: इट्स होको. अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव memories.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke योग है.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही
2: ही नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

got a beautiful track from the movie PK. You're listening to Funny Shah Radio 104.9 FM. This is Ramita with the show Filmy Friday. जहाँ पे अभी वक्त है this segment which is called Weekend का Wait, Watch या Skip. आई मीन आज जो फिल्म्स रिलीज हो रही है बहुत मतलब मेन इम्पॉर्टेंटली जो हिंदी फिल्म्स रिलीज हो रही है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ एंड देर आर मल्टीपल मूवीज विच आर रिलीजिंग टुडे. कहने को तो बहुत कुछ है यानी कि देर इज़ अ मूवी कॉल्ड द इंडिया स्टोरी विच इज़ विच स्टार्स काजल अग्रवाल एंड श्रेयस तलपरे विच इज़ रिलीजिंग टुडे और विच हैज़ ऑलरेडी रिलीज टुडे एंड इट्स अ हार्ड हिटिंग ड्रामा टैकलिंग फूड अडल्टरेशन एंड पेस्टिसाइड फार्मिंग. साथ साथ एक और मूवी विच इज़ कॉल्ड द तेरा यार हूँ मैं. इट्स अ रोम कॉम और रोमांटिक ड्रामा भी बोल सकते हो फीचरिंग अमन इंद्र कुमार. अब अमन इंद्र कुमार कौन है? इट इज़ एक्चुअली हिडन. द आंसर इज हिडन इन द नेम ओनली. वो है इंद्र कुमार द डायरेक्टर यानी कि फेमस फॉर हिज मस्ती फ्रेंचाइजी राइट नाउ विच आई कैन रिकलेक्ट एट द टॉप ऑफ माई माइंड. अमन इंद्र कुमार जी अपने ही पिताश्री के मूवी में डायरेक्टेड बाय हिम ओनली इज डेब्यूटिंग विथ आकांक्षा शर्मा और उनकी मूवी तेरा यार हूँ मैं इज रिलीजिंग टुडे. वैसे ट्रेलर तो खास उतनी मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई बट रिलीज करने वाली है तो थोड़ा सा इज्जत तो मैं देने ही वाली हूँ अपने शो में मेंशन करके. और सबसे ज़्यादा द मूवी विच हैज़ ग्रैब्ड माय अटेंशन विच इज़ मैक्स मिन एंड इतना डिफिकल्ट नाम है कि मेरे से भी पढ़ा नहीं जाता. मियाज़ाकी यस. कास्ट में है नफीसा अली मेधा शंकर मंदिरा बेदी इज बैक इन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन और साथ साथ है आदिल हुसैन. जैसे नेम्स है और हैवी वेट नेम्स है वैसा भी कॉन्सेप्ट है. ट्रेलर इज काफ़ी इंटरेस्टिंग विच इज़ मैक्स मिन एंड मियाज़ाकी. सो अगर आपके वीकेंड मूड में कुछ लाइटर एंड डिफरेंट है यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ वॉच. लेकिन वॉच लिस्ट में एटलीस्ट डाल सकते हो. लेकिन मेरी फिलोसॉफी बहुत ही सिंपल है कि अगर ट्रेलर पसंद आए ना देन यू कैन वॉच इट. अगर फ्रेंड ने रिकमेंड किया है तो यू कैन कंसिडर इट. एटलीस्ट कंसीडर कर लो. लेकिन अगर इंटरनेट ने मास्टरपीस बोल दिया ना तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा रुक जाना. ऑलराइट, कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शाह रेडियो. दिस इज फिल्मी फ्राइडे विथ मी रिमीता.

माय गॉड, व्हाट अ रेज दिस मूवी हैड क्रिएटेड लास्ट टाइम अराउंड दिस, आई मीन लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम. आई मीन सैयारा, कौन भूल सकता है वो, मतलब ऑडियंस के रिएक्शंस मूवी थिएटर्स में. लोग रो रहे हैं, कपड़े भार रहे हैं, कुछ लोगों को तो डॉक्टर्स के पास भी ले जाना हो रहा था. क्या हो गया रहता लास्ट ईयर इस मूवी के इर्द गिर्द. वैसे डॉक्टर से याद आया, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. आपके जो डॉक्टर है, जनरल हेल्थ फिजिशियन, वो आपके साथ जब आप चेकअप के लिए जाते हो, कितना टाइम अराउंड स्पेंड करते होंगे यार? 5 मिनट 10 मिनट बस? आपको लगता है कि ये काफ़ी है आपके चेकअप के लिए या आपके हेल्थ असेसमेंट के लिए? क्योंकि ना, आई हैव अ बेटर सोल्यूशन फॉर दिस विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पे हर अपॉइंटमेंट को मिलता है 30 मिनटों का एक शेड्यूल. यानी कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो पूरे 30 मिनट तक आप अपने हेल्थ के बारे में उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, एडवाइसेस ले सकते हो. क्योंकि ना, आपके जो हेल्थ है, इसको समझने में वक्त लगता है. और ये वो, मतलब डॉक्टर्स ऑफ द पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बिकॉज फॉर देम यू आर जस्ट नॉट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली. एंड फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द हेल्थ ऑफ दिस कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ऑलवेज देयर फॉर यू. 30 मिनट इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल्स ऑल्सो. सो एंगजाइटी केयर हो, फाइब्रोस्कैन हो, फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग हो, और बहुत सारे कंसर्न्स जो हमारे हेल्थ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमने फेस किया हो, फॉर एवरीथिंग यू कैन कंसिडर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. सो यू नीड टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे. और अपॉइंटमेंट की अगर बात करूँ ना, तो अगर आपको अभी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको अभी मिलेगा. आज चाहिए, आज मिलेगा, कल चाहिए, कल मिलेगा. एनी टाइम यू कैन गेट योर अपॉइंटमेंट्स ओनली एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. सो द नंबर टू गेट योर अपॉइंटमेंट इज 214-666-6259. दैट्स 214-666-6259, बिकॉज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में योर हेल्थ इज देयर पैशन.

What a beautiful track from the movie Dil Bechara. Aur jab bhi anything related to this movie, whether it's a song or it's a mere mention of this movie, dil thoda sa theher jata hai. And you know the reason why. It's Sushant Singh Rajput. Well, it's a filmy Friday and it's time for the Guess the Movie segment. Jahan pe aapko sirf guess karna hai कुछ क्लूज से एक फिल्म का नाम और जिससे आप जीत सकते हैं एक गिव अवे. और दोस्तों, ये गिव अवे ना कोई ऐसा वैसा गिव अवे नहीं है. इट्स अ टिकट टू द प्रभु देवा कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग ऑन 1st of August एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर ग्रैंड प्रेरी में हो रहा है. वैसे तो आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट axs.com और यू कैन विजिट आर सोशल मीडिया पेजेस, यानी कि फनीशिया के सोशल मीडिया पेजेस में भी आप जाके अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं इजीली. बट मैं आपको एक मौका दे रही हूँ टू गेट और विन अ टिकट फ्रॉम अस फॉर द कॉन्सर्ट प्रभु देवा, वेयर माथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप ब्रिंग्स यू दिस इंडियन माइकल जैक्सन, जिसे हम ना फॉन्डली कहते हैं प्रभु देवा को, वी द बॉलीवुड बफ्स ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड. सिंपल है, कुछ क्लूज और डायलॉग्स, नहीं डायलॉग नहीं बोलूंगी मैं, आपको सिर्फ क्लूज दूंगी, जिस्ट ऑफ द प्लॉट दूंगी और आपको गेस करना है ये मूवी कौन सी है. और करेक्ट आंसर देने वाले को मिलेगा एक टिकट फॉर दिस कॉन्सर्ट. तो शुरू करें. क्लू नंबर 1, एक लड़का. क्लू नंबर 2, एक लड़की. एंड क्लू नंबर 3, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है दोनों की और उसके बाद दोनों की लाइफ कंप्लीटली बदल जाती है. यानी कि व्हेन दे मेट एंड दे मिस्ड देयर ट्रेन, उनकी लाइफ बदल जाती है. सिंपल सा सवाल और क्लूज भी दे दिए यार, कितने और क्लूज दूं मैं. कॉल मी एट 972-235-5555 एंड विन अ टिकट फॉर द प्रभु देवा कॉन्सर्ट.

0: जब वी मेट, जी हाँ, आंसर इज जब वी मेट एंड नॉट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे कि बहुत लोगों ने कॉल करके बताया है मुझे. एंड द विनर नेम इज, विनर्स नेम इज अश्विन पटेल जी. कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन वन टिकट ऑफ द प्रभुदेवा कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग ऑन 1st of August.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
16: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
18: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

कौन कमबख्त कहता है कि हर किसी को प्यार नहीं मिलता है यार। सेल्फ लव भी कोई चीज है यार। जब हो अपने आप से प्यार जता लो, और जताने का एक मौका भी दे रही हूँ आपको, बिकॉज श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज नाउ ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट फ्रिस्को, यानी कि इट्स अ बिगर लोकेशन विथ मोर ब्राइटर एंड डाजलियर ज्वेलरीज ऑल अराउंड द DFW। अगर आप फ्रिस्को में है और आप अगर वाकिफ हो उनके earlier store which was there in Frisco only at the Warren and Parkwood crossing, which is very very near to where I stay. But if the new store will fascinate you more, because along with their gold design, sparkling diamonds, they specialize in Kundan to stunning Polki collections. So Sri Krishna Jewelers, which is a reflection of tradition, elegance and timeless beauty, just like you are. Sri Krishna Jewelers, making every moment or occasion memorable since 1967. अभी 67 की बात आई तो चलिए 1947 की एक गाना सुन लेते हैं यार। जोक बहुत ही खराब था, but trust me, गाना बहुत सही है।

जितनी बार आपका दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश करे ना कि ना ना ना रे, अभी ये टाइम नहीं है आपका नया घर खरीदने का या फिर अपार्टमेंट से घर शिफ्ट होने का, जितनी बार बोले ना ना रे ना रे ना, उसे सुनने का नहीं, क्योंकि ड्रीम होम मॉर्गेज सॉल्यूशन से आप अपने सपनों का घर बसा सकते हो, क्योंकि दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज सिंस 1998 और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है जो कि इज लाइसेंस्ड इन ऑल द 50 स्टेट्स, आपको देगी एक स्ट्रेस फ्री प्रोसीड्योर पाने का मौका, बिकॉज दे हैव सॉल्यूशंस व्हिच आर स्मूथ, हैसल फ्री एंड पर्सनलाइज्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली. सो हेड टू dreamhomemortgage.com और कॉल इन द नंबर 972-245-5626 एंड स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विथ कॉन्फिडेंस. जितनी बार नाना बोले बोलना हाँ यार मेरे पास ड्रीम होम मॉर्गेज है. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Ramita with Filmy Friday.

You are listening to Filmy Friday with me, Ramita. और Filmy Friday का एक सेगमेंट है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, यू नो, डायलॉग ऑफ द वीक. और आज सीरियस फिलोसफी नहीं, आज थोड़ा विलेन मोड एक्टिवेट करते हैं अपन का. बिकॉज ना डायलॉग है मोगैम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया एंड वॉट अ डायलॉग. तीन शब्द है खाली और कैरेक्टर इज इमॉर्टल. एक्चुअली मुझे लगता है हम सबके अंदर एक छोटा सा मोगैम्बो जरूर जो फ्राइडे 5 बजे के मीटिंग को कैंसिल होते ही ये डायलॉग मुंह से अचानक, ऑटोमेटिकली निकल ही आता है, मोगैम्बो खुश हुआ. बॉस ने बोला कि मंडे को डिस्कस करेंगे, और ये मंडे को डिस्कस करने का थॉट ही इसी से निकल आता है, मोगैम्बो खुश हुआ. रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि बिल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट भेज दिया है आपके लिए, मोगैम्बो बहुत खुश हुआ. सो आज का सवाल जाते जाते ये है कि आज ऐसा क्या हो गया है जिसमें आप बोलेंगे मोगैम्बो खुश हुआ. मे बी बॉस से अर्ली छुट्टी, या किसी ने आपके लिए थोड़ा सा कॉफ़ी या चाय कैंटीन से कोई लेके आया है, बना दिया है, यार मे बी आपका अमेज़न का पैकेज जो लेटर बॉक्स के नीचे पड़ा है, घर जाते वक्त आप उसको पिकअप करने वाले हो. सोच लो, और थोड़ा ही टाइम मैं हूँ आपके साथ, यानी कि 2:30 बजे आई विल बी साइनिंग ऑफ. टिल देन एंजॉय दिस म्यूजिक और

0: यार इस गाने से पहले मैंने पूछा था कि मुगैम्बो आज क्यों खुश है, तो फातिमा जी ने अभी कॉल करके बताया कि वो खुश है इसीलिए क्योंकि अचानक से उन्हें फ्राइडे का डिनर इनविटेशन मिल गया है और इस बात की खुशी से फातिमा जी फूल ही नहीं समाई। मेरे को कॉल किया उन्होंने और ये छोटी सी बात शेयर की। और एक्चुअली में ना फिल्में ही तो हमें सिखाते हैं कि रियल इमोशंस क्या होते हैं और उन्हें बयां कैसे किया जाता है विद डायलॉग। ऑन दिस थॉट आई विल बी साइनिंग ऑफ। दिस इज रमिता विथ हर शो फिल्मी फ्राइडेज। गोना कम बैक नेक्स्ट वीक ओनली ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM। तब तक आप अपना टाइम जियो। मुबारक हो आपको आपका वीकेंड।
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
4: Aapka doctor gaya long vacation par, koi baat nahi. Passion Health Primary Care ke multiple locations, experienced physicians ke saath quality care kabhi nahi rukti. Aur sirf treatment hi nahi, aaj hi apna annual physical schedule kijiye. Regular screenings ke saath depression aur anxiety screening, alcohol health screening, fibro scan, vitamin B12 testing aur bahut kuch. Passion Health Primary Care, healthcare that never takes a vacation.
2: Call 214-666-6259 to book your appointments today.
1: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
0: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
0: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
0: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
8: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
7: What?
9: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

very very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Funny Share Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with the Sunehri Kiran. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Rimita, thank you for an absolutely beautiful show. As always, Funasia रखता है आपको entertained as well as informed 24/7, 365 days a year. हम रहते हैं आपके साथ. आप भी हमारे साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू. और आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में हर रोज आपके लिए आता है एक नया फ्लेवर, और आज का फ्लेवर तो बहुत ही स्पेशल. ये अगला आधा घंटा वी विल लिसन टू मिक्स पॉट. जी हाँ, उसमें कुछ नया गाने, कुछ पुराने गाने, इसी तरह में वर्ड्स चुन के आपके लिए नए और पुराने गाने एक दूसरे से को रिलेट करते हैं कि ये गाना सुन के मुझे कौन सा नया गाना याद आया. और 3 से 4:30 तक बच्चा पार्टी, रेडी हो जाइए. इट इज किड्स जंक्शन. आज है जुम्मा, फ्राइडे के दिन. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. के साथ साथ किड्स जंक्शन की स्पेशलिटी होती है, आपकी फोन कॉल्स लाइव लेंगे, और एज ऑलवेज हमारे साथ मौजूद होगा एक बहुत स्पेशल गेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट मिक्स पॉट राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण विद दिस ब्यूटिफुल नंबर टेकन फ्रॉम द मूवी गाइड.

लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म गाइड से सुन रहे थे आप ये गाना, और इस गाने के लिए लता मंगेशकर जी ने पाया फिल्म फेयर नॉमिनेशन बैक देन। देखिए मैं आपको बताऊं कि 1967 की ये बात है जब फिल्म फेयर ने नॉमिनेट किया लता मंगेशकर जी को फॉर आज फिर जीने की तमन्ना है। जबकि म्यूजिक डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो SD बर्मन ने भी इस गाने या इस मूवी के म्यूजिक के लिए पाई नॉमिनेशन। कुछ आउटस्टैंडिंग गाने आपने इस मूवी में सुने जैसे कि आज फिर जीने की तमन्ना है, या फिर गाता रहे मेरा दिल, या फिर पिया तो से नैना लागे रे, मतलब एक से बढ़कर एक क्लास अपार्ट गाने इस फिल्म के। तो जब मैं ये जीना आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है सुनती हूँ, तो मुझे अभी लेटेस्ट जो बदलापुर फिल्म आई थी उससे वो जीना जीना गाना याद आता है। मिक्स पॉट में ऐसे ही गाने आपके लिए पेश करती हूँ, कुछ नए कुछ पुराने। दिस इज आफ्टरनून ड्राइव Time with Sunehri Kiran.

आतिफ असलम की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द मूवी बदलापुर, जिसमें हमें वरुण धवन एक बड़े ही कमाल के कैरेक्टर में नजर आए. एंड आई थिंक आई मस्ट से कि वरुण धवन जब सीरियस रोल्स करते हैं तो बहुत अच्छा उनको परफॉर्म करते हैं. आई नो वाई वो गोविंदा और सलमान खान की रीमेक्स बनाने में लगे हुए हैं, बट आई वुड लव टू सी हिम इन मोर सीरियस एंड ऑथेंटिक रोल्स. अच्छा जी, अब अगला गाना मिक्स पॉट में आपके लिए रेडी है. वो गाना प्ले करने से पहले आपको बताएं कि सेलिब्रेट कीजिए इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026. दिस इज हैपनिंग ऑन सैटरडे August the 15th from 2 PM onwards, और हो रहा है आपके लिए Comerica Center Frisco में. और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि बिल्कुल फ्री एंट्री है, नो टिकट टू बाय. और एक और जो सबसे स्पेशल बात है इस गर्मी के मौसम में वो है कि इट इज कंप्लीटली इनडोर्स. तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि टेम्परेचर क्या होगा और हमें कैसे ड्रेस करना है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली इनडोर्स एंड इट इज कंप्लीटली फ्री. तो कम एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड. ग्रैंड परेड होने वाला है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, लाइव म्यूजिक है, शॉपिंग करने के लिए जो शॉपिंग के को पसंद करते हैं उनके लिए शॉपिंग होगी, इनक्रेडिबल ड्रोन शो होने वाला है और फायरवर्क्स होने वाले हैं ग्रैंड फिनाले में. तो अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, जस्ट कम एंजॉय एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन IANT आनंद बाजार 2026.

फिल्म बॉबी से लिया गया ये गाना शैलेंद्र सिंह की आवाज में इसे पिक्चराइज किया गया, आनंद बख्शी का म्यूजिक, और बॉबी मूवी रिलीज हुई थी 1973 में। आपको एक मजे की बात बताऊं जी कि बॉबी मूवी राज कपूर साहब का टोटल फोकस जो बॉबी मूवी में था वो हीरोइन सेलेक्ट करने में था। ऋषि कपूर जिनकी ये डेब्यू मूवी थी अलॉन्ग विद डिम्पल कपाडिया, ऋषि कपूर पे उनका फोकस बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब सिचुएशंस ऐसी बनी और स्टोरी इतनी अच्छी बनी तो ऋषि कपूर ने अपने फादर से ये कहा कि आप मुझे इस फिल्म में लॉन्च कीजिए, एंड दैट इज हाउ ऋषि कपूर बिकेम अ पार्ट ऑफ द मूवी। लेकिन इनिशियल सिलेक्शन डिम्पल कपाडिया की हुई थी। ये गॉसिप के गलियारों से एक छोटी सी खबर फिल्म बॉबी की आपको दे रही थी, और अब आपके लिए लेकर आई हूं एक गिव अवे, क्योंकि है ये मिक्स पॉट और आपकी पसंद के मैं जानना चाहती हूं कि कौन से पुराने गाने हैं जो आपको बहुत पसंद है। गिव अवे आया है मिराज लाउंज की तरफ से। सबसे पहले तो ये कि अगर आप जो है वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ जबरदस्त जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे प्रीमियम हुक्काज हों, डिलिशियस बाइट्स मिलें आपको, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स हों, लाइव म्यूजिक और डीजे भी हो, एक्साइटिंग डीजे नाइट्स हों, तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है मिराज लाउंज पे। और बेस्ट पार्ट ये है कि उनका हैप्पी आवर जो है वो, मतलब हैप्पी आवर नहीं, हैप्पी डे सा लगता है मुझे, मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 11 बजे से 6 बजे शाम तक, 11 AM to 6 PM दे हैव हैप्पी आवर फीचरिंग हुक्कर्स स्टार्टिंग एट जस्ट 24.99 एंड शॉट्स फॉर ओनली 4.99। और इसी के साथ लेडीज, इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ लेडीज नाइट, देन लेडीज नाइट हैपन्स एट मिराज लाउंज, एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू लुकिंग फॉर समथिंग एक्साइटिंग, देन डोंट फॉरगेट मिराज लाउंज हैज कॉलेज नाइट्स एज वेल। मतलब आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, मिराज लाउंज इज अ प्लेस फॉर यू टू गो। दे आर लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे, तो जरूर विजिट कीजिए मिराज लाउंज। एंड नाउ यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग $20 ऑफ अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50। तो आप जाइएगा, $50 बिल आपका बने तो आपको $20 मिल जाएंगे ऑफ इफ यू आर द विनर। आई एम गोइंग टू पिक टू विनर्स। मुझे कॉल कीजिए 972-235-5555 पे, मिक्स पॉट में मुझे बताइए कि पुराने गानों में आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। 972-235-5555 इज द नंबर टू दिस स्टूडियो। वैसे हम शायर तो नहीं, इससे मैंने कुछ नया गाना आपको जरूर प्ले करके सुनाना था, तो शायरी से याद आया मुझे नज्म।

जी हाँ, मिक्स पॉट में कुछ नए कुछ पुराने गाने, यही हमारा मिक्स पॉट का रहता है सिलसिला। और आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। और ब्रेक पे इस गाने पे जाते हुए आपके लिए गिव अवे लेके आई थी मिराज लाउंज की तरफ से, $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 आपको मिलना था। और आप सबने मुझे फोन कॉल करके अपने अपने पसंद के पुराने गाने बताए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जैसे कि सुरैया जी ने बताया ऐ सनम जिसने तुम्हें बनाया, और साथ ही साथ श्री राम का पसंदीदा गाना है नीले नीले अंबर पे, जो कि डेफिनेटली मैं प्ले करने वाली हूँ। और साथ ही साथ पुनीत जी का पसंदीदा गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ। ये सारे ही ऐसे गाने हैं जो हम सब के पसंदीदा हैं, और हम सब ही इन गानों को कभी ना कभी किसी ना किसी तरह एंजॉय कर चुके हैं। आज के हमारे लकी विनर्स के नाम अनाउंस करते हुए अगले गाने की तरफ जा रहे हैं श्री राम एंड पुनीत। आप दोनों ने जीत लिया है ये $20 ऑफ विद मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50। दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 6 to 7 days टू गो टू मिराज लाउंज एंड अवेल योर $20 ऑफ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50। दिस इज मिराज लाउंज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। दैट इज वॉट मैटर्स द मोस्ट टू अस।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
3: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फन एशिया रेडियो पर। Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network. Get Omar or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
2: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
1: क्यों?
2: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
3: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डट्स मे बी टू ब्लेम एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स. डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड. सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री एस्टिमेट्स. फन एशिया लिसनर्स गेट $100 ऑफ डक्ट क्लीनिंग प्लस free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
5: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

0: tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Lekin ka plan abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
7: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
8: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
7: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
9: Hey, tumne kabhi insurance liya?
10: Liya.
9: Kabhi policy samajh bhi aaya?
10: Nahi aaya.
9: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.senadainc.com today.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
14: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10.
14: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
15: ये तारा वो तारा हर तारा.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
16: For decades, one man has made the world dance.
4: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
10: कितने आदमी थे?
11: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: And if you are looking to add a little sparkle to your very special moment, जैसे कि engagement होने वाली है, anniversary आ रही है आपकी, कोई और celebration, या आपने अपने loved one को कोई gift देना है, या फिर you just want to treat yourself, तो Malabar Gold and Diamond, जो कि Preston Road पे located है in Frisco, उससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी to find stunning diamond jewelry. Elegant है, timeless as well as they are, every piece is crafted to be special. और खास तौर पे ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं, डार्जलिंग नेकलेसेस हैं, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, और एक्सपीरियंस आप करेंगे उनकी अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप और ब्रिलियंस. हर पीस ऑफ ज्वेलरी जो है वो ऐसे शाइन करती है जैसे कि किसी यू नो रॉयल किसी पर्सन का के लिए वो लिया या खरीदा जा रहा हो. सो ट्रीट योरसेल्फ रॉयली, गो टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, एंड बिल्कुल मत भूलिए टू फॉरगेट देयर ऐप विच इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मोबाइल ऐप. गो टू योर ऐप स्टोर्स, डाउनलोड इट नाउ, दैट वे यू विल स्टे कनेक्टेड फॉर विद द लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट कलेक्शंस एज वेल एज मेनी मोर डिटेल्स दैट कीप that they keep updated on their app.
1: നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ. ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

This part of our show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the USG. और चाहे आप individual हो या आपका कोई startup हो या फिर आप established business रखते हो, AG Fintax आपको offer करती है innovative financial solutions which are tailored around your needs. From bookkeeping, payroll accounting and bank and credit reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसके साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी एजी फिनटेक्स आपको प्रोवाइड करते हैं एंड दे रियली हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड कंप्लायंट एज वेल एज फ्यूचर रेडी. ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं, दे आर कमिटेड टू योर फ्यूचर. तो बनाइए एजी फिनटेक्स को अपना पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बाय गिविंग देम अ कॉल और चेकिंग आउट देयर वेबसाइट. दैट नंबर इज 469-942-9888 is that number. Ya phir unki website agfintax.com pe log on kijiye. Sun rahe hain aap Kids Junction right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran Bachcha Party. I am here till 4:30 for you, taking your calls live. You can give me a call, request a song that you like, and let's have a discussion point. Give me a call and tell me, you know, would you rather eat आइसक्रीम और पिज्जा? अगर आपके सामने पिज्जा हो और आइसक्रीम हो तो आप उनमें से क्या चीज पिक करोगे? गिव मी अ कॉल. आई नो माय आंसर. आई थिंक आई एम गोइंग टू वेट एंड लिसन टू योर्स. 9722355555.

For the past 13 years, Texas Primary Care Clinic has been proudly serving our community. Aur ab they are growing with a brand new name and a second Frisco location. Introducing Lunoxy Medical, L-U-N-O-X-Y. Ye hai ji unka spelling, if you're looking for it on Google. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Yahan pe aapko milega primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, as well as Himalayan Med Spa services. To matlab, ab aapko kahin jaane ki zarurat nahi hai ki CT scan idhar से होगा तो एक्सरेज के लिए यहां जाना पड़ेगा, लैब टेस्टिंग के लिए यहां जाना पड़ेगा. सब कुछ आपको मिलेगा अंडर वन रूफ एट लुनोक्सी मेडिकल. दे आर ओपन 7 days a week from 8 AM to 8 PM एंड द बेस्ट पार्ट इज नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड, वॉक इन एनी टाइम. दिस इज किड्स जंक्शन एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, एवरी वीक वी आर हैविंग अ समर फन और समर ब्रेक आरजे एट चिलर पार्टी दैट वी सेलिब्रेट फ्रॉम 4 PM टू 4:30 PM एंड आई हैव आर नेक्स्ट चिलर पार्टी इज समर ब्रेक आरजे in the studio. He will be live with us very, very soon.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
7: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Aaja meri gaadi mein baith ja.
12: Baith jaun? पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो.
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: जिंदगी एक रंगमंच है
17: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
7: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल .com.
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
7: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com.
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
20: बेटा 95% आए?
21: हाँ मम्मी.
20: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
22: मेरा?
20: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
22: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Kids Junction. आप सुन रहे हैं on your afternoon drive time with सुनहरी किरण और पिछले कुछ हफ्तों से लेके आ रहे हैं आपके लिए चिल पार्टी, जहां हमारे साथ मौजूद होते हैं एक बहुत ही प्यारे छोटे से नन्हे मुन्ने से या मुन्नी सी समर फन ब्रेक आरजे. और आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं द समर ब्रेक आरजे. आई एम गोइंग टू ओपन द माइक एंड लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. गो अहेड.
1: Hello Dallas, I am Rudraksh, your summer RJ for the day in Chiller Party on Fun Asia Radio. We will have lots of fun together.
0: Okay, so Rudraksh, welcome to Chiller Party at Kids Junction. Tell me Rudraksh, what is your favorite song?
1: It's Aari Aari.
0: Aari Aari, okay, let's begin guys with Aari Aari and then we are going to talk more with Rudraksh. Me and him are going to co-host this segment for you.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
2: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी

0: या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
2: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ki doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
6: Hocho.
7: Hoko.
6: Hocho.
7: Hoko.
6: Hocho.
7: It's Hoko.
8: Arey, bas bhi karo yaar.
7: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh nahi aa raha hai.
8: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai?
9: Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
11: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
8: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ अनीशा रेडियो पर.
12: कितने आदमी थे?
13: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

You are tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त गिव अवे. और गिव अवे है जी, यू रियली डोंट वांट टू मिस इट. दिस इज प्रभु देवा लाइव इन कॉन्सर्ट. जी हाँ, आ रहे हैं प्रभु देवा लाइव इन कॉन्सर्ट. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग हिम, इंडियाज माइकल जैक्सन. और ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि उनके साथ आ रही हैं लॉरेन गॉटलिब, सोनल बहादुर, एलेक्सेंडर नोयल, हारिनी, नताशा एज वेल एज सानवी मेघना. तो क्या होने वाला है? एक अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें क्या होगा और आप उसको कैसे, मतलब क्या एनर्जी होगी, क्या वाइब होगी, क्या होगा ये मैं नहीं जानती. इसके लिए हमें कॉन्सर्ट अटेंड करना पड़ेगा गाइज. और कॉन्सर्ट आप कब अटेंड करेंगे? सैटरडे ऑगस्ट 1st को एट द टेक्सास ट्रस्ट सीयू थिएटर, ग्रैंड प्रेरी में लोकेटेड है. अभी अपने टिकट बुक कराइए. नंबर नोट कीजिए. You can call at this number and book your tickets. That is 248-233-3828. 248-233-3828 is the number where you can book your tickets, as well as, you know, the easy way will be go to our Fun Asia's social media page, because we are the proud media partner of this event. Hamare social media pages pe pin hui hai post how to book your tickets easily. So there you go, book your tickets and enjoy Prabhu Deva live in concert with an amazing dance performing concert with lots of stars. Itne bade bade stars. Aur aapko ye chance de rahi hu jeetne ka ek giveaway of this event. You are going to win one ticket. So aapko kya karna hai? Prabhu Deva ki baat ho rahi hai. To mujhe aapko ye batana hai ki Prabhu Deva ki date of birth kya hai. Matlab I can't make it any simple to give you the ticket. 972-235-5555 is the number to the studio. Give me a call and tell me what is the date of birth of Prabhu Deva. Kalanda.

राइट, प्रभु देवा का ये एक टिकट मेरे पास था आपके लिए, और आपसे सवाल बड़ा सिंपल पूछा था कि प्रभु देवा की डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्योंकि दैट वाज अ वेरी स्पेशल डे व्हेन दिस डांसिंग डीवा वाज बोर्न, द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया. तो डेट ऑफ बर्थ आपको सही बताते चले, 3 अप्रैल 1973 इज हिज डेट ऑफ बर्थ. जी हाँ, और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. अभी भी फोन लाइंस बात कर रही हैं, बट टाइम खत्म हो चुका है कॉन्टेस्ट का. बताते चलें आपको जी, सबसे पहले तो दर्शन, मीना, श्रिया एंड मेनी मोर जिन्होंने फोन करके बिल्कुल सही जवाब दिया. और हमारे जो आज के लकी विनर हैं फॉर दिस, हु हैज वन दिस वन टिकट फॉर प्रभु देवास कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन August 1st Saturday एट टेक्सास ट्रस्ट सी यू थिएटर ग्रैंड प्रेरी, इज दर्शन पारिक. दर्शन कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने गिव अवे. कीप एन आई ऑन योर लुक आउट ऑन योर ईमेल आईडी एज वेल एज सी यू माइट रिसीव समथिंग फ्रॉम फन एशिया. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. फन एशिया इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. आपको क्या करना है, सुनते रहना है और बने रहना है हमारे साथ. बहुत बहुत शुक्रिया.

जो नीता गांधी की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना, जो कि ओरिजिनली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लिया गया था फिल्म गाइड से, वहीदा रहमान जी पे था ये पिक्चराइज। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें वेदर, एक्चुअली इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट। और इस वक्त यानी कि फ्राइडे जुलाई द 24th 4:48 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकनी में इस वक्त है 91 degrees, however इट फील्स लाइक 101। दिन रहा पार्टली सनी, हाईज इन द मिड 90s, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी इन द इवनिंग, देन बिकमिंग मोस्टली क्लाउडी। ह्यूमिड होगा विद लोज अराउंड 80s। और पोलन काउंट आज का 4.9 है विच इज मीडियम। यूवी इंडेक्स इज 10 विच इज एक्सट्रीमली हाई, सो कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी, कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनराइज आज का हुआ 6:33 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:31 PM. That was your weather forecast. After this song, I am going to give you the forecast, the currency update as well as the gold price update.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट. लेकिन हाँ, पहले आपको करेंसी अपडेट देती चलूं जी कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है. तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूएस यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.87, ब्रिटिश पाउंड 0.75 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि इंडियन रुपी 96.41 पे ट्रेड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर 1.40, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.70 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 154.32, जबकि बांग्लादेशी टका 123.53 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट. अकॉर्डिंग टू goldprice.org, गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,052.88, जबकि गोल्ड प्राइस पर ग्राम है $130.30. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 17 सेंट्स का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $5.27 का इजाफा देखने को मिला. दैट्स वेरी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हेयर ऑन सुनहरी किरण.

जी हाँ, और आपको आगे बढ़ते हुए बताते चलें जी, बस ऑलमोस्ट विदा का टाइम आ चुका है, चला है आपसे। ट्रैफिक अपडेट आपको देने वाली हूँ, ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, इफ यू आर यू नो गोइंग थ्रू एनी सच थिंग, जैसे कि कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट, स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम को हैंडल कर लेने दीजिए तमाम लीगैलिटीज, इंश्योरेंस कंपनी, पेपर वर्क, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, और आप सिर्फ अपनी सेहत और अपनी वेलबींग का पे ध्यान रखिए। बिकॉज अटर्नी उमर ख्वाजा एंड देयर टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन द केस। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। यू और एनी वन यू नो इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, उमर ख्वाजा को कॉल कीजिए। दैट नंबर इज 469-300-5046 is the number, or you can visit the website, which is attorneyomar.com, OMAR, attorneyomar.com. एंड नाउ द ट्रैफिक अपडेट। आपको हमें दो, एक्चुअली तीन इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं जी। सबसे पहले देर इज एन इंसिडेंट एट 183 टूवर्ड्स ग्रॉयलर रोड वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से थ्री लेन्स आर ब्लॉक्ड। बट ये इंसिडेंट अबाउट 5-6 घंटे पहले का रिपोर्टेड है, तो होपफुली अब इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ गई होगी। देर इज अनदर इंसिडेंट और कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड एट IH-35 टूवर्ड्स ओक स्ट्रीट नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से 3 out of 5 lanes आर ब्लॉक्ड। द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज reported extremely high. Another collision is reported at 35 east towards Teasley Lane northbound, jiski wajah se 3 out of 6 lanes are blocked. The severity of this incident is reported very high as well. There is another collision that has just been reported while I was talking to you at 75 towards Parker Road northbound, jiski wajah se 1 exit lane is blocked. The severity is of course very high of this incident as well. That's pretty much all that I have for you where traffic is concerned on the roads of Dallas right now. Wherever you are going, please stay very careful as well as wary of your surroundings. I will see you Monday ek bar phir 2:30 PM to 5 PM. I will be here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Same time, same place on Fun Asia Radio. Have a lovely, lovely rest of your weekend.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
14: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
11: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
15: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe it easy, live safe with Duck Time.
9: अरे यार, घर मिल गया।
16: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
17: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
16: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
17: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
18: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।

0: चित्त की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के जो।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday, दोस्तों 104.9 FM फनी जॉय रेडियो सुन रहे हैं। मैं आपकी होस्ट नवनीता, और ये जो फ्राइडे जब आ जाता है ना, ऐसे ही मूड खास खास होने लगता है। और आज तो जैसे क्लाउडी फ्राइडे रहा तो दुनिया डिफरेंट लग रही थी। गर्मी थी लेकिन गर्मी लग नहीं रही थी। गाड़ी में हम बैठे हैं और क्लाउडी डे है और गाड़ी चली जा रही है, लग नहीं रहा इतनी गर्मी है। वैसे फील्स लाइक 101 था है जो अभी अभी किरण ने कहा आप लोगों को, लेकिन द पास्ट यू डेज हैव बीन रियली हॉट विद द सन शाइनिंग ब्राइट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। आई थिंक इन साइड द कार एनी वेज यू आर अंडर अ गुड टेम्परेचर बिकॉज एयर कंडीशनिंग ऑन होता है। हाउ एवर, ये जो फीलिंग थी आज की ज़्यादा बेटर थी बिकॉज यू फेल्ट इट वॉज नॉट सो हॉट। ऐसा था क्या कि मैं ही अपना स्टोरी बना रही हूँ? आई नो इट जस्ट फेल्ट नॉट सो हॉट। डिडंट इट टुडे जस्ट फेल्ट लाइक गर्मी के बीच में थोड़ी सी कम गर्मी है? वेलकम

सफायर ब्यूटीफुल सॉन्ग 104.9 एफएम फर्नीचर रेडियो पर. और आप मेरे सफायर पीपल, यू आर द बेस्ट पीपल. और गर्मी की जब बात हो ही रही थी, मेरे लिसनर ने कहा, नमिता जी गर्मी तो है लेकिन तपिश कम है. या वही तो बात है, दैट समझ इट अप, कि गर्मी है बट तपिश कम है. तो अब कहाँ गई गर्मी, गर्मी है या नहीं है? मतलब जस तक तपिश रहे तो गर्मी ज़्यादा फील होगी, मतलब अगर सर्दी में तपिश हो तो फिर क्या होगा? माय गॉड, कितने सारे क्वेश्चंस हो गए. बट क्वेश्चन तो इसने पूछा है, किसी ने कहा मुझसे ये मत पूछो फ्री हो या नहीं, पहले मुझे काम बताओ ताकि उसी हिसाब से बहाना बना सकूं कि फ्री हूँ या नहीं. सो वही बात है कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया जाए, कि आंसर के जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए. आप घूम गए ना, कोई बात नहीं, चलिए घूमते रहिए गाड़ी में. आज दिन अच्छा है, तपिश कम है, बादल हैं और एसी चल रहा है, गाने तो वाव मैं बजा ही रही हूँ. फ़ोन में रहिए, फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा जब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ. क्वेश्चन ओके, आंसर फिर आप वैसे ही दीजिएगा. ओके, वेलकम वेलकम, थैंक यू. मैं बस घमंड नहीं करती, स्मार्ट हूँ, स्मार्ट. Show

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Documents या parcel भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: Welcome, Namaste, Salaam Alaikum, Sasriyakal, Kamo Nacho, Kim Cho. स्वागत है आप सबका 104.9 FM फानीजा रेडियो पर मेरे शो पे, जिसका नाम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आर यू हैप्पी फॉर दिस वन?

0: सुपर डुपर मजा आ रहा है क्योंकि फ्राइडे यार मजे का दिन शुरू हो चुका है. तो वाइब ऑफ फ्राइडे इज ऑलरेडी हियर. कल सैटरडे है, परसों संडे है, वीकेंड उसे कहते हैं, बट हमारे लिए तो तभी शुरू हो जाता है जब फ्राइडे की शाम आ जाती है और मेरा शो आ जाता है. मेरे लिए तो फॉरएवर दिस इज द बेस्ट टाइम इन माय लाइफ.
1: समझ नहीं आता, नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर मेरे को.
2: गाने का इक्वल वैल्यू है.
1: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना.
3: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूं.
0: सुपर डुपर दिस वन इज आंखों से तूने 2.0.

अलका याग्निक, कुमार शानू का ये यस्टर ईयर का गाना आज भी वाओ, डिडंट इट फेल्ट सो सो सो गुड. और नया थोड़ा सा फॉर्मूला में है विद 2.0 फ्लेवर, तड़का जिसको कहते हैं, 2.0 का छोंक. आंखों से तूने ये क्या कह दिया. WF9 FM फनी जॉर्जी जो सुन रहे हैं, मैं आपकी होस्ट ये जो 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लेके आती हूँ अपना शो. बस यही चाहती हूँ कि आप बने रहें मेरे साथ. और पता है जब आप बने रहते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है. और ये जो लाइफ है ना, लाइफ वो लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बाबू मोशाय जो भी कुछ होनी चाहिए, बट इसमें एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. और श्योर एक्सीडेंट होता है ना तो बहुत मुश्किल है, बट कभी कभी वो मुश्किल में भी काम आ जाते हैं लोग, जैसे कि हमारे ओमार ख्वाजा साहब. अगर आप इन्वॉल्व होते हैं कोई एक्सीडेंट में, ट्रक या गाड़ी या स्लिप एंड फॉल, मतलब कोई भी एक्सीडेंट में, अटॉर्नी ओमार ख्वाजा आपका जो केस है बहुत अमेजिंगली फाइट कर सकते हैं और आपकी परेशानी इसलिए कम कर सकते हैं बिकॉज यू कैन गेट द इंश्योरेंस, द मुआयना. डीलिंग विद द कंपनीज, द इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल. उस समय आपको ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें, पर ये सारे जो स्ट्रेस हैं वो उन्हें दे दें. वो लेने को तैयार हैं. ओमार ख्वाजा साहब ये कहते हैं, डोंट वरी बी हैप्पी, मैं लेता हूँ ना, वाई आर यू टेकिंग योर स्ट्रेस. और ये भी कहते हैं कि कॉम्पनसेशन मैं तब तक नहीं लूँगा जब तक हम कुछ कॉम्पनसेशन पा न लें. हमारे पैसे ना आ जाए तो आप क्यों देंगे पैसे. सो दैट इज़ हाउ ही डील्स विद इट. सो यू डोंट पे अनटिल यू विन. तो करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर दबाना है. अभी नहीं, अभी तो एक्सीडेंट के लिए नहीं, आई मीन जस्ट कीप इट इन योर फोन सो दैट एवर यू नीड, एवर एनीबडी कॉल्स यू एंड सेज यू नो व्हाट मेरा एक्सीडेंट है मैं क्या करूं, एंड यू गिव दिस नंबर टू देम, 4693005046, दैट्स द नंबर. यू कैन विजिट attorneyomar.com. उसी समय अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, ओमार ख्वाजा का नाम है, omar.com, attorneyomar.com, आई एम सॉरी, attorneyomar.com. और कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो फिर ये कर लीजिए इमरजेंसी डायल में ये नंबर स्टोर, 4693005046. आई मीन emergencies never tell you that I'm coming, oh my darling, never.

0: With that beautiful Sonia गाना आज हमारे साथ स्टूडियो में a home mortgage expert हैं from my family homeloan.com जो families को home loan option समझाने और home buying process को simple बनाने में help कर रहे हैं. आज हम इनसे कुछ common questions पूछेंगे जो आपके भी दिल में होगा शायद. You know, sometimes it is the same questions which I have, you have the same. और पूछने वाले हैं जो हर होम बायर्स के लिए यूजफुल होगा. सो लेट्स वेलकम ऑन एयर आवर वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट शेफाली पंजवानी. हाई शेफाली जी, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग ग्रेट. हैप्पी फ्राइडे टू ऑल फाइनेंशियल लिसनर्स.
0: Awesome, awesome. Happy Friday to you as well. बहुत मजा आ रहा है. दिन आज थोड़ा सा कम है, हॉट, राइट?
1: आई नो, आई फील लाइक इट्स बेटर.
0: बेटर,
1: नाइस.
0: चलिए, आप बेटर कैसे बनाएंगी? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स और 1099 अर्नर्स के लिए होम लोन लेना थोड़ा डिफरेंट होता है. क्यों ऐसा होता है?
1: इसलिए होता है कि 1099 अर्नर्स आर यूजुअली बिजनेस ओनर्स और either applied they are businesses employed by small businesses. So either unko 1099 milta hai ya to K1 milta hai agar partnership mein business hai. So is wajah se inka income calculation hai wo different ho jata hai, stable nahi hota hai due to add on investments, add on businesses or sold out businesses ki unhone kuch sell kiya hai pichle 2 years mein, kyunki self employment mein 2 years ki history देखी जाती है टू कैलकुलेट द इनकम. तो उनका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है एज पर लेंडर गाइडलाइंस. जबकि W2 इनकम जो अर्नर्स होते हैं उनका कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है क्योंकि उनकी सैलरी होती है, इनकम स्टेबल होती है. सो दैट्स हाउ इट डिफर्स इट. एंड देर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स. जैसे बैंक स्टेटमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें ईदर, नॉट बोथ, ईदर पर्सनल और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स के बेस पे इनकम कैलकुलेशन किया जाता है. देन देर इज एन ऑप्शन बेस्ड ऑन द VOE, वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो देर आर सेवरल डिफरेंट. इसलिए होता है कि इनकम इज डिफरेंट इट कैलकुलेटेड एंड अगेन सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल टू दैम टू गेट बेटर क्वालिफाइड as per individual scenario.
0: Awesome. So these options, and you can always call Shefali Panjwani at 469-360-4677 and the options will be said, told to you. So there's again one, I'm sure you would be seeing options. Ye jo equity hamari hoti hai na, koi bhi हमने इन्वेस्टमेंट किया हो, हमारे घर हम जिसमें रह रहे हैं या रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें से क्या हम वो इक्विटी को निकाल के वापस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर दैट?
1: ग्रेट क्वेश्चन. यस, यू कैन डू इट ऑन प्राइमरी रेसिडेंस एंड आल्सो ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. जिनके पास में इक्विटी इनफ बिल्डअप हुई है वो लोग कैश आउट लोन निकाल के इधर ही लॉक on primary residence or HELOAN, which is on both primary and investment. They can take out the equity, cash out equity for business purpose or for improvements, for consolidation of debt. There can be several reasons as per individual scenario. They can reuse that and invest it to build portfolio or to buy another property. That's a great way to increase your portfolio and also take advantage of the equity. Equity is just sitting in your property. It's not making you any income. You are getting a rental income. You're getting a cash flow, but you're not using the equity, just sitting on the property. You can pull out that cash equity, invest it, and grow your income portfolio, rental portfolio. So those are the options available. You can reach out to me at 469-734-3338. And in that, several options are available for non-QM loans, which is very easy to get qualified, and also DSCR for the rental properties. You don't need income documents for that, for the rental properties. On the DSCR, it's only ratio-based. depending on the cash flow of the rental income. So please give me a call if you have an investment property and you have an equity building that you want to invest into buying another property. We can definitely help you out at 469-734-3338. Thank you.
0: Awesome. Thank you so much. You have a wonderful weekend and thank you so much. Bye-bye.
1: You too, bye.
0: And the website is myfamilyhomeloan.com. Thank you, दोस्तों. So, now I'm on 4.9 FM for Nesha Radio. यहाँ पर हम ये जो शाम है इसमें ऐसे आते हैं शेफाली पंडवानी, ऐसे आते हैं इन्फॉर्मेशन जो अभी आने वाला है इस छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे पूरे डैलस में सबसे ब्यूटीफुल ये है कि हमारा रेडियो है विच कीप्स अस कनेक्टेड एंड कीप्स अस ऑल्सो कनेक्टेड टू ऑल दीज बिजनेसेस दैट आर हियर टू सर्व अस. एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माई लिसनर्स जो हमें सुनते हैं एंड दे कनेक्ट टू दीज पीपल हु हैव आर बिजनेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आती हूँ और बहुत सारे खूबसूरत गाने लाइंड अप है आपके लिए. डोंट गो एनीवेयर.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com. Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
5: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
6: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
7: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
6: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
14: Welcome back, दोस्तों. स्वागत है आप सबका 104.9 FM Fun Asia Radio पर. पता है, दोस्त का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बात दुनिया नहीं समझती ना, वो एक दोस्त समझ लेता है. इसलिए कहते हैं तीन चीज़ों का ज़िंदगी में हमेशा ख्याल रखना चाहिए. ऑलवेज प्रॉमिस का, जो आपने किसी से वादा किया हो, फ्रेंडशिप का, जो आपके दोस्त हैं, और रिलेशनशिप का, जो आपका साथी है. क्योंकि ये अगर टूट जाए, जैसे कि आपका प्रॉमिस, आपकी दोस्ती या आपका रिलेशनशिप, वो लोग आवाज़ नहीं करती. नॉट एट ऑल. प्रॉमिस टूटेगा तो कोई आवाज़ थोड़ी होगी. टूटा है, ग्लास फेंक कर देख लीजिए, आवाज़ होगा. बट प्रॉमिस टूटेगा तो आवाज़ नहीं होगी, फ्रेंडशिप भी और रिलेशनशिप भी. पर वो बिने आवाज़ में भी एक सन्नाटा छा जाएगा. यस, क्योंकि जब वो टूटता है, then they create silence, not noise. So दोस्तों को संभाल के रखिए. दोस्तों मेरे जैसे हैं आप, मैं हमेशा चाहती हूँ आप बस संभले रहें, कहीं ना जाएं. मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आप हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स.

ये तो चढ़ता है नशा, दोस्ती का नशा, जैसे कि मैंने कहा था. थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड एंड ये फ्रेंडशिप का मज़ा. वैसे दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों में बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बता दूं मैं. सबसे ये बड़ी ये खबर है, बॉलीवुड से आ रही है कि धमाल 4 जो है अजय देवगन की, इज़ रियली डूइंग, स्टिल डूइंग वेरी वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. ऑलरेडी 185 crores कमा चुकी है और अभी भी कंटिन्यू टू डू वेल ग्लोबली, मेकिंग इट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्टेस्ट कॉमेडी हिट्स दिस ईयर. कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, अमिताभ बच्चन, पता तो हो गई. ऑफ कोर्स 4 ऑप्शंस देते हैं और उसी में फंसा देते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन क्या, कौन बनेगा करोड़पति इज हैज़ बीन अनाउंस कि 18वां यू नो द सीजन ऑफ कौन बनेगा करोड़पति विल बी प्रीमियर्ड ऑन August 10th विद अमिताभ बच्चन रिटर्निंग एज अ होस्ट. ही इज़ बीन डूइंग इट. उन्होंने लास्ट टाइम बोला था रिटायरमेंट ले ले रहा हूँ, नहीं करूँगा, बट कैसे जानी दिया जाए. तो ही इज़ कमिंग बैक season 18. अरे बिग बॉस सलमान खान का भी एक के बाद एक सीजन, सुपर डुपर, पीपल वेट फॉर इट. अपना मजाक उड़ाने के लिए भी उस घर में पहुंच जाते हैं, इतना फैन फॉलोइंग है बिग बॉस. लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है फॉर अ प्रभु देवा गिव अवे. मातंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज ब्रिंगिंग इंडिया के माइकल जैक्सन, राइट? दैट इज प्रभु देवा DFW में, और बहुत सारे डांसर्स हैं उनके साथ जो उनकी तरह ही डांस में, चांस में डांस नहीं करेंगे, डांस पे डांस करेंगे और बहुत कमाल का डांस करेंगे. लेकिन मैं बताऊंगी कौन है वो. लेकिन अभी आपके एक टिकट का गिव अवे मिल सकता है. फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. तो मैंने अभी अभी अनाउंस किया कि बिग बॉस जो सलमान खान का फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है, इस बार अगेन बिग बॉस हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस कि इस साल भी सलमान खान ही है जो उसे होस्ट करने वाले हैं. पर ये कौन सा बिग बॉस है? आई मीन अमिताभ बच्चन की तरह मैं अगर आपको ऑप्शन दूँ तो ये बिग बॉस 21 है, बिग बॉस 18 है, लाइक कौन बनेगा करोड़पति बिग बॉस 20 है, या बिग बॉस 22 है. फोन उठाई, नंबर दबाई, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर फॉर अ टिकट टू हॉलीवुड, नो बॉलीवुड, विथ आर वेरी ओन प्रभु देवा.

0: Mama, ma, Mashuka. Good evening, Financial Radio. You are live on air. Hello?
1: Hi. Hi, this is Shrikant
0: here. Hi, Shrikant. So, phir ye jo Kaun Banega Karopati is 18th season coming out on Big Boss. What's the answer?
1: Yeah, Big Boss is getting 20. It's premiered in this year, actually. Big Boss 20.
0: Big Boss 2020. Do you watch Big Boss?
1: Yeah,
0: I also watch. Main to bahut shiddat se dekhti hu. I get to know so many different characters in life, man.
1: Yeah, that's true, yeah.
0: So
1: very interesting.
0: It's very interesting. All right, Big Boss 20, Shrikant. Okay, main batati hu answer. Aap bas sunte rahiye, okay? I just lost that call. I'm so sorry. But yes.
2: Shrikant. Good. Okay. Batati hu answer.
0: Okay. Can you switch off the radio, please?
1: Yes. Yeah.
0: What is the answer?
1: It's season 20.
0: What is your name?
1: My name is also Shrikant.
0: अरे ये कैसे हो गया? अब श्रीकांत 2 हो गया या आप? ठीक है, अगर मैं अनाउंस करूंगी तो आई विल से श्रीकांत 2, ओके? एंड श्रीकांत 1, ऑलराइट?
1: ओके.
0: आई होप दैट श्रीकांत 1 इज लिसनिंग. हाउ दो एक के बाद एक 20, अब आई होप 20 बिग बॉस जैसे ना कॉल करे श्रीकांत, राइट? पर 2.0 हो ही गया है. एवरीथिंग इज 2.0. बट ऑसम. यू वॉच बिग बॉस?
1: नहीं.
0: अच्छा, क्यों नहीं देखते?
1: टाइम नहीं है.
0: बिजी मैन. ऑलराइट, टाइम नहीं है. ये बात अच्छा है, टाइम नहीं है. दैट्स अ गुड एक्सक्यूज.
1: आई मीन,
0: नहीं, दैट्स अ गुड रीजन टू नॉट वॉच.
1: आई एम मूविंग अवे फ्रॉम स्क्रीन एज मच एज पॉसिबल.
0: अच्छा, मतलब नो सोशल मीडिया.
1: मैं रेडियो लिसन कर रहा हूँ.
0: ओह नाइस, ये तो फिर मुझे बात पसंद आ गई. ओहो, ऑलराइट, थैंक यू सो मच. स्क्रीन से दूर हटो दोस्तों, सुनो अब हमें रेडियो में. 104.9 FM, Funny Jar Radio, live on air. Hi. Sorry, I couldn't hear you. Can you switch off the radio? Tell me.
3: Hello.
0: Yeah.
3: Yeah, hi. Can you hear me now?
0: Yeah. I can hear you now.
3: Okay. Is the answer season 20?
0: Is the answer season 20? Why? Are you guessing or you're taking wild guess?
3: No. I'm pretty sure it's 20, but... Okay, probably the line got connected so late. I was thinking that maybe you already got the correct answer from other callers. So yeah, that's right.
0: Correct. तो मैं, आपने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करके देख लेता हूँ.
3: Maybe.
0: So, जो right. दूसरे लोग 20 बोले होंगे जो सच्ची आंसर है. वो जो ब्लफ होता है ना, आई जस्ट फील कि वो उसी वदनमिता इसलिए दे दे मेरा यूनिक आंसर है. बट या दैट्स सो क्यूट. मैंने खुद ही मैंने कुछ भी बोल रही हूँ मैं. बट थैंक यू सो मच. व्हाट इज योर नेम?
3: सौरभ.
0: चलिए,
3: नो आई एम नॉट श्रीकांत. तो आप सौरभ 2.0 का वेट कीजिए फिर.
0: अच्छा, आप नेक्स्ट 2.0 का वेट करते हो सौरभ. थैंक यू सौरभ.
3: थैंक यू.
0: बाय बाय.
3: यू टू. बाय.
0: टेक माय लास्ट कॉलर. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
4: या हाय, माय नेम इज नटराज.
0: नटराज,
4: द आंसर इज बिग बॉस सीजन 20 इज कमिंग इन सितंबर.
0: ओके, एंड आर यू गोइंग? अगर आपको चांस मिले तो आप जाओगे?
4: Yeah, the answer is Big Boss 20.
0: I got your answer. Thank you so much. That is the correct answer.
4: Thanks.
0: Yeah, no worries. Good evening, Financial Radio. You are live on air.
5: Hello, namaskar.
0: Namaskar, sir. How are you?
5: कैसी है नवनीता जी?
0: फर्स्ट क्लास. अब एकदम सही मौके पर आपने कॉल किया है, क्योंकि मैंने आप इस चांस पे मैं आपको एक सिचुएशन में डालना चाहती हूँ. एंड लेट्स सी इफ यू आप डांस कर सकते हो उस चांस पे.
5: चांस पे डांस?
0: हाँ, चांस पे डांस इसको कहते हैं.
5: क्या बात है, क्या बात, आ गई आप.
0: अच्छा, तो फिर अगर बिग बॉस में आपको एंट्री दी जाए तो आप लोगे?
5: देखेंगे.
0: अच्छा, तब ठीक है. थैंक यू सो मच. ये देखने वाले तो अब तो मैं तो और...
6: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
7: Official tax and finance partner, AG FinTax.
6: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
7: In association with Passion Health Primary Care. We'll be right back.
8: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
9: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
10: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
11: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
12: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi kharidne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
13: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
12: Kahan?
14: Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
13: Foodistan in Aubrey. Everything desi, one place, one vibe.
15: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
13: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
13: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
18: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
19: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
18: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
19: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
18: ये क्या होता
19: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
20: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
21: एंड नाउ एट अ बिगर location just 3 doors down with limited reservation available.
22: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926641.
23: Mere kal wale khane mein dosa, आने वाले खाने में डोसा.
13: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
24: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
13: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 120 और कस्टर जंक्शन.
25: जिंदगी एक रंगमंच है
26: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
13: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
27: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
28: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
0: Naam to sunai hoga, Navneeta. वो मैं हूँ पांच साल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लेकर आई हूँ अपना ये शो जिसका नाम है सिर्फ ये मैं नहीं बोल रही, मुझे पता है आप भी बोल रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि फ्राइडे आ गया है और वीकेंड बस यही तो आ गया है, यही यही यही वीकेंड है। और आपको मैं बता देती हूँ, आपकी ज़िंदगी में आपने ये सीखा हो या नहीं सीखा हो, शायद अभी मैं आपको एक नई सी बात सिखा दूँ अभी अभी इसी वक्त। एंड दैट आंसर इज कि आपको पता है विल व्हेन व्हाट वेयर, ये सारे क्वेश्चंस है राइट। इन सारे क्वेश्चंस में W आता है, विल व्हेन व्हाट वेयर, और ये W को आप T में बदल लेना तब उन सब का आंसर तभी मिल जाता है। विल टिल व्हेन देन व्हाट दैट और वेयर देयर, हा हा हा हा, सारे W's को बदल के T's कर दें तो वो W's के आंसर आपको T's से मिल जाते हैं। पता था प्रॉमिस बोलिए।

होता होता होता प्यार होता ब्यूटीफुल यार, तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का नाम। माय गॉड, ऐसे भी रख देते नाम ये, तू झूठी मैं मक्कार, कौन बोलता है ऐसे? कम ऑन, थोड़ा सा तो डेकोरम रखो लाइफ में। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपका गर्लफ्रेंड ऐसे हम दोनों जने एक दूसरे को एक झूठा एक मक्कार ऐसे, नॉट नाइस नॉट नाइस। बट अभी अभी मुझे किसी ने कुछ कहा, ASAP क्या है नवनीता? आई सेड ASAP, एज सून एज पॉसिबल। हम कितना लिखते हैं एज सून एज पॉसिबल, तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ एल्कोहल सेव्स ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ, दिस इज़ अ नाइस कोड वर्ड, चल ASAP, एल्कोहल सेव्स ऑल प्रॉब्लम, दोज आर द कोड वर्ड। तू झूठी मैं मक्कार ऐसा कुछ बोलता है? ऐसा बोलो ASAP। सुन रहे हैं 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो। दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग दिस फ्राइडे इवनिंग? धमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है, मालामाल हो रहा है, जो भी हो रहा है, आई मीन समथिंग होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा फैमिली के करीब होना चाहिए ये सब चीज़। यू नो ना, एवरी थिंग कैन हैपन इन विद अराउंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हो तो क्रेव कर रहे हो कुछ चीज़ी डिलाइट का, तो देसी ट्विस्ट के लिए फन पिज़्ज़ा किचन चले जाइए। यहाँ पर फ्लेवर, ओह माय गॉड, फायर, फैमिली, सब कुछ साथ साथ ही है, FFF, यू नो। एंड वेजी लवर्स अगर हैं तो ट्राई द अचारी पनीर पिज़्ज़ा पैक विद द टैंजी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक। यार मैं ऐसे बोलूँगी तो मुझे खाने क्यों मन होगा और आपको भी मन होगा? चलिए आप तो जाके खा सकते हैं, वॉट अबाउट मी? आई हैव टू बी हियर टिल 8। और अगर आप मीट लवर्स हैं तो तंदूरी चिकन पिज्ज़ा है विच इज़ प्योर स्मोकी परफेक्शन के साथ, स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। तो फिर, या फिर आपको बोल्ड या ब्यूटिफुल अच्छा लगता है बैलेंस, दिस इज स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्ज़ा किचन। फॉर डिटेल्स आप विजिट कर सकते हैं funpizzakitchen.com। और $10 का आपको गिफ्ट कूपन मिल सकता है। चलिए बताऊंगी, इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद एक गेम आने वाला है। व्हाट डू यू से?

0: ब्यूटीफुल सुन रहे 104.9 FM फनीजा रेडियो. मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यहाँ पर बनी हुई हूँ आपके साथ. पता है, प्लानिंग करना हो वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकर, केटरिंग और वो सारे छोटे मोटे डिटेल्स होते हैं ना, ओ माई गॉड, वो बहुत सारे हो जाते हैं. एक नाम आप याद रखिएगा, वेनेसा इवेंट्स. लिख लो. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डेकर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड. सो आप क्या करेंगे? बस फोकस करेंगे ऑन मेकिंग मेमोरीज व्हाइल दे टेक केयर ऑफ द रेस्ट. आपका दिन है, आपकी मेमोरी है, आपका स्पेशल डे है. स्पेशल रहना चाहिए ना. क्या काम काज में लगेंगे? फोन उठाए, नंबर दबाइए, हरी बसेरा को कॉल कीजिए आज ही, 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. दोस्तों, फिल्मी वेरी फिल्मी आपको देने वाली हूँ मैं एक फिल्म, एक लाइन, उसको आपको बताना है मुझे 20 सेकेंड्स में. आप इसे कैसे बताएंगे? ओके, सो शोले फिल्म. कितने आदमी थे. शोले फिल्म तो कल्ट है, शोले फिल्म तो सबने देखी है, शोले फिल्म बार बार देखी है. कितनी बार देखी है? 1000 बार देखी है. जितनी बार भी देखी है, आप क्या शोले को 10 सेकंड में मुझे बता सकते हैं वो शोले फिल्म में था क्या? फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, मैं आपके कॉल्स लूँगी और इससे मिलेगा आपको एक गिफ्ट, $10 फ्रॉम FPK और फिर एक गाना भी. ओके, और मज़े तो अलग होंगे ही. आप शोले को 10 सेकंड में कैसे बता सकते हैं? गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: या शोले फिल्म 10 सेकंड में. दो चक्की होते हैं और अपने दोस्त के बुलाने पे टाकू गब्बर सिंह से लड़ने जाते हैं और मतलब बाद में एक मर जाता है, एक जिंदा रहता है.
0: मतलब एक थराजा, एक थिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, यू नो, ऐसे ऐसा होता है ना. पर
1: 10 सेकंड में तो यही होगा,
0: 10 सेकंड में यही होगा. नाम बताइए.
2: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो.
5: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: It's Hoko.
10: अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
5: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया।
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया।
14: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
17: इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, When was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
0: सुन रहा 104.9 FM फनीजा रेडियो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजा रेडियो पर। जी, 10 सेकंड्स की शोले जारी है फॉर द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन। और लेती हूँ मैं अपने कॉलर को, एक कॉलर को, एंड देन आई विल मूव टू अ सॉन्ग और फिर ये वाला आंसर आप कैसे कर सकते हैं देखती हूँ मैं आपको 10 सेकंड में आप शोले कैसे बता सकते हैं। गुड इवनिंग फनीजा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
18: हेलो,
0: हेलो, हाउ आर यू, कैन यू स्विच ऑफ द रेडियो?
18: या श्योर। सो अभी भी हम शोले का कर रहे हैं?
0: हाँ, तो मैं आपका टाइम स्टार्ट करूंगी तभी आप शुरू करना, ठीक है? सो हाँ, तो आप 10 सेकंड में मुझे शोले बताएंगे फुल स्टोरी। ओके
18: ओके,
0: टाइम स्टार्ट्स नाउ।
18: तो ये एक स्टॉप कॉप ठाकुर रहते हैं जो दो क्रिमिनल जय और वीरू को हायर करते हैं अपने विलेज को बचाने के लिए गब्बर सिंह से।
0: जय और वीरू से तो 10 सेकंड हो ही गया, बट हाँ फिर
18: हो भी गया।
0: हाँ, हो भी गया। ऑलराइट, तो जय वीरू को एक, हाँ मतलब 10 सेकंड तो बहुत ही कम है, बट ओके, फिर क्या एडजस्ट हुआ?
18: एडजस्ट था कि उन लोग बहुत अच्छी फाइट करते हैं और जय ट्रेजिकली मर जाता है, बट वीरू बचता है और गब्बर फाइनली मर जाता है।
0: Awesome.
18: बस 15 सेकंड, 20 सेकंड जो भी है।
0: What is your name?
18: अमित।
0: अमित साहब, गुड जॉब, थैंक यू, कीप लिसनिंग। ओके, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। ओके, दिस इज योर सॉन्ग।

0: FM, फनी जा रेडियो सुन रहे हैं। और ये जो शोले का जो पूरा प्लॉट है, अगर आप 10 सेकंड में बता सकते हैं तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखते हैं आप इसमें कितने और कुछ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। अगर वो प्लॉट 20 सेकंड में आपको बताना हो, मुझे फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। हाय, हु इज़ दिस?
1: हाय, मेरा नाम सामी है। सामी
0: समीर, हवा का झोंका, सब
1: सामी सामी
0: सामी। सामी, आप शोले ने आपने देखा है?
1: जी, देखा है काफी बचपन,
0: हाँ,
1: बचपन
0: बचपन में, मतलब अभी आपका बचपन गया नहीं? मैं तो सोची बचपन अभी भी चल रहा है।
1: हाँ अभी तक चल रहा है बचपन में, थोड़ा
0: बचपन तक। ऑलराइट, तो फिर आप क्या 20 सेकंड में मुझे प्लॉट बता सकते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करके?
1: हाँ ठीक है। जे वीरो गप्पू को बाट लगाते हैं, फिर वीरो फिर शादी हो जाती है, फिर हो गई मूवी, ये बताता
0: शादी कब हुई, किसकी?
1: हेमा मालिनी के साथ ना, वो ट्रेन में हुई ना वो।
0: वाह, ये तो आप नया वाला शोले भरा है, सुपर, कहाँ जब मजा आ गया। फिर हेमा मालिनी से किसकी शादी हुई?
1: वीरू से या जे से पता
0: वीरू,
1: नहीं,
0: या अच्छा, दोनों में
1: क्योंकि
0: से एक से। ओ वाह, आई लव इट,
1: हाँ
0: ये तो अच्छी वाली बेस्ट स्टोरी है। अब आपने कहाँ देखी है वाली शोले?
1: इट्स लॉन्ग टाइम अगो, बट दे वर इन ट्रेन, दे वर हगिंग ईच अदर, आई थॉट दे वर गेटिंग मैरिड, सो
0: सो क्यूट। ऑल राइट, आपको फिर से देखनी पड़ेगी, आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आप आंसर कर रहे हैं, बट आप वापस से एक बार शोले देखिए, मजा आ जाएगा, यू विल लव इट वन मोर टाइम। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, सो क्यूट, आई जस्ट, यू नो वो कोई दो दूसरी फिल्म को जोड़ दी है शोले से, शोले से। वाह वाह वाह वाह। गुड इवनिंग फनीशर रेडियो, फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हेलो।
0: हाय,
1: सो देर वॉज ए कंटेस्ट वेयर आई टू टेल शोले स्टोरी इन 10 सेकेंड्स।
0: हाँ 10, अभी तो 20 कर दिया है मैंने, सो दैट आई कैन गेट अ लिटिल
1: हाँ
0: मोर हाँ मसाला आउट ऑफ द मूवी, जब मूवी देख ही रहे हैं हम शोले वापस से। लेकिन आप शोले ही बताइएगा, ओके? कितनी बार देखी है आपने
1: श्योर
0: शोले?
1: श्योर श्योर। आई थिंक आई हैव वॉच्ड एटलीस्ट 10 टाइम्स।
0: ऑलराइट, आपका नाम क्या है?
1: गौतम। गौतम
0: गौतम साहब, शुरू किया जाए वक्त, योर टाइम
1: ठाकुर,
0: स्टार्ट्स
1: हायर
0: नाउ।
1: जयन वीरू, ओके ठाकुर, हायर जयन वीरू टू किल गब्बर, जय डाइज एंड वीरू मैरिज बसंती।
0: वाह भाई, टू मच, आप तो 10 सेकंड में ही आंसर किए, आई लाइक इट। कितने आदमी थे इसमें बताइए? सरकार दो। ओके, सो व्हाट इज योर नेम? गौतम, गौतम, यस, सी 20 सेकंड तो अभी हुआ है, पर सुपर, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन, यू डोंट गो एनीवेयर। मैं अपने लिसनर्स को एक गाना सुनाकर आपसे इन्फॉर्मेशन लेती हूँ।

0: सुपर विक्की कौशल हसन तेरा तौबा तृप्ति डिमरीपी इस फिल्म में और बहुत मज़ेदार ये वाला गाना। और शोले शोले एक्चुअली ऐसी फिल्म है जिसने हर किसी ने हज़ार बार देखी है। हज़ार इज़ लाइक वेन्यू से बहुत सारा काम हो ना, दो से ज़्यादा इट इज़ हज़ार काम, वैसे ही। और यह इट्स सो इजी टू से द स्टोरी। तो मेरे पास एक लिसनर है, पहले उनको मैं थोड़ा सा कुछ टफ करूंगी। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय
1: हाय, सचिन हियर।
0: सचिन आपका नाम क्या है? सचिन आपका नाम है, सॉरी। सचिन आपका नाम क्या है? तो सचिन, मुझे अभी आपसे एकदम सिंपल सिंपल जय वीरू और उसकी कहानी नहीं सुननी। गब्बर को सीन में लाना है, गब्बर का कोई एंगल सीन में लाना है। यू के नॉट जस्ट टॉक अबाउट वीरू जय एंड ही देवर हायर्ड एंड समबडी डाइड। ओके, सो आई विल स्टार्ट योर टाइम, जस्ट वन मिनट विद द टाइमर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1: गब्बर डाकू था, उसको एक गांव लूटना था, बट ठाकुर बीच में टांग अड़ा रहा था तो उसके ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए। फिर ठाकुर ने दो पीपल हायर किए और गब्बर को मारने के लिए।
0: ओह माय गॉड,
1: गब्बर मर गया। बट गब्बर तो मर गया, बट ये उन लोग का दो दोस्त में से एक दोस्त मर गया।
0: You are superb. Love it, Swami. मैंने जो आपको ट्विस्ट देता, आपने उसमें टांग जो अड़ाया ना, क्योंकि हाथ बेचारे अड़ा नहीं सकते थे, टांग अड़ाया उन्होंने। बट यू गेट समथिंग। सो हियर यू आर, यू गेट इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ से एक फुल फ्लेज्ड ग्रोसरी का गिफ्ट हैम्पर। हाउ डज दैट साउंड?
1: थैंक यू।
0: हाँ सर, सो कहीं जाएगा मत, मैं लेती हूँ आपका इंफॉर्मेशन, होल्ड ऑन। Okay, and this is what my listeners are going to listen to, a music.

0: झुमका।
1: This is the झुमका that fell. What do you do? 104.9 FM, फनी जो रेडियो पर मैं तो झुमका ढूंढने जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेके। एक तब से झुमका गिरा के बैठे हैं और हर बार ही झुमका ही गिर रहा है। सुनते रहिए 104.9 FM, doesn't matter, गिर गया झुमका। How do we get?
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
5: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: तारा वो तारा हर तारा।
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
13: What?
14: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
16: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
1: वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन नेचर रेडियो पर। मेरे साथ मैं आपकी होस्ट नवनीता पानसाथ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन दिस शो। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और बताओ और आज एक्चुअली फ्राइडे की शाम खुश तो बहुत हूँ मैं। झेलू राम की इस बात से एक्चुअली मुझे हंसी आ गई। कभी यूजुअली मैं ये बात एंटरटेन नहीं करती, झेलू राम कभी भी बात करते हैं तो, बट आज मुझे सच्ची हंसी आ गई। तो झेलू राम की वाइफ आती है झेलू राम के पास, कहती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो झेलू। तो झेलू राम कहते हैं शाहजहाँ से भी ज़्यादा। तो उनकी बन्नी कहती है मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनाओगे। झेलू राम कहते हैं मैं तो प्लॉट ले भी चुका हूँ पगली, देर तो तुम ही कर रही हो। इसे प्यार कहते हैं, शरारत कहते हैं या दिल की बात? टेल गोपी टेल।

खिला खिला पेज थ्री टू ईटरी, यार कोई मिल गया है तो पेज थ्री ईटरी पर आप जाकर खाएंगे ना, तो वैसे ही डेट हो या फैमिली टाइम हो या फ्रेंडशिप टाइम हो, इट बिकम्स ग्रेट फन, क्योंकि उनका जो खाना है वही ग्रेट फन है. फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स. और अगर आप फिर भी पेज थ्री ईटरी एट हब 121 में नहीं गए हैं तो यार वॉट इज रॉन्ग, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट मैन, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड उस क्रॉसिंग पे खड़ा होता है जहाँ पर मॉडर्न फ्लेयर है, यानी आप समझ गए, टोटल कॉस्मोपॉलिटन फूड. Whether it's brunch, lunch, dinner, date night, or a foodie meetup, Page 3 brings a perfect mix of flavor, energy, and vibrant vibes. Aap pahunch jaiye, visit kijiye Page 3 Eatery at Hub 121. Sun rahe hain 104.9 FM, Fun Asia Radio. Shukriya, thank you, dhanyawad. Tune in karne ke liye. Pata hai yaar, dosto, aapko ek heads up hai, matlab shout out hai, aur aapko ek badi si applaud hai. अगर आपको आपके बचपन का लैंडलाइन नंबर याद है, लैंडलाइन नंबर याद है, वो लैंडलाइन जो हुआ करते थे एक ही जगह पर तार से जुड़े होते थे और फिर हम उसे उठा के वहीं पर ही बात कर सकते थे, इस तरह आज के ज़माने की तरह नहीं हर जगह हम बात कर रहे हैं, वहीं बात होती थी एक ही सीट पर. लेकिन आई वॉज गेटिंग टू द लैंडलाइन नंबर, बचपन का लैंडलाइन नंबर याद है लेकिन कल जो आपने वो पासवर्ड चेंज किया था ना वो भूल गए, राइट? बोलिए आप अगर वो हैं तो चलिए सेम पिंज, बट इज़न्ट दैट अमेजिंग दैट यू रिमेंबर द लैंडलाइन नंबर बट यू डोंट रिमेंबर द पासवर्ड्स. सुपर.

0: ब्यूटीफुल एहसास थोड़ा डिफरेंट है वही गाने का. सनम गुलाबी आंखें 104.9 एफएम फन एजा रेडियो पर शुरू होता है आपका फेवरेट गेम शो.
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
0: ओय ओय ओय जमुरे क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी. हिंदी इज अलाउड. ओके ओके ओके आई गिव यू कि आप उर्दू भी बोल सकते हैं, बट नहीं अलाउड है अंग्रेजी. देखती हूँ मेरे अगले कॉलर क्या हिंदी में बात कर सकते हैं मेरे साथ. गुड इवनिंग फर्नीचर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. आप अपने ब्लूटूथ से हट जाइए प्लीज.
2: मैं ब्लूटूथ पे नहीं, स्पीकर फोन पे
0: हूँ. तो उससे हट जाइए.
2: ओके
0: परफेक्ट, नाउ इट्स क्लियर. नाइस. व्हाट इज योर नेम? हेलो.
2: हाँ जी.
0: या आपका नाम बताइए. नाम बताइए.
2: अभिजीत.
0: अभिजीत. ऑलराइट अभिजीत साहब, आप गर्ल हिंदी हिंदी खेलने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ जी.
0: सो आप ऑफ एंड ऑन जा रहे हैं क्या, स्पीकर एंड नॉन स्पीकर ऐसा कुछ?
2: नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ.
0: अच्छा, वेरी नाइस. तो ठीक है. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अभिजीत साहब. सो घर जा रहे, कहाँ से जा रहे?
2: मैं अपने कार्यालय से घर जा रहा हूँ.
0: अच्छा, मतलब अभी तक ऑफिस में थे, इतना लेट. हाउ लॉन्ग डू यू वर्क?
2: कभी कभी हो जाता है.
0: जैसे आज? हाउ कम?
2: जैसे आज नहीं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम ज्यादा था.
0: व्हाट डू यू डू?
2: सॉफ्टवेयर में.
0: सॉफ्टवेयर तो अंग्रेजी है भाई.
2: उसका उसका उसका हिंदी तो नहीं हो सकता अभी. सॉफ्टवेयर का तो उतना तो आप
0: नहीं, उतना कैसे, उतना क्या हुआ, तो अंग्रेजी है ना सॉफ्टवेयर.
2: सॉफ्टवेयर का हिंदी आप ही बता दीजिए.
0: हाँ, मैंने तो खिला रही हूँ, खेलने वाली होती तो. बट अभियंता आप बोल सकते हो, यू नो. जो इसको अगर आप, यू आर इन आईटी?
2: हाँ जी.
0: ऑलराइट. तो लेकिन हाँ, यही बात है कि आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे, औपचारिक रूप से तंत्रांश ऐसा कहेंगे. बाबा.
2: ओके.
0: हाँ, सॉफ्टवेयर को हिंदी में सॉफ्टवेयर नहीं तो औपचारिक रूप से तांत्रिक. बाप रे बाप.
2: ठीक है ठीक है, गूगल ने भी आपको सॉफ्टवेयर ही बोला तो चल जाएगा.
0: नहीं बोला सॉफ्टवेयर, बोला औपचारिक रूप से हिंदी एक्चुअली ये है.
2: ठीक है
0: ठीक है, थैंक यू सो मच. पता है जिंदगी में अगर आप सोचेंगे, अभी हमारा, हमारी जिंदगी का ये पड़ाव है, हम जिस जिंदगी में अभी हैं, यू नो, वी यूज टू हियर आर डैड्स एंड आर पेरेंट्स से, हम 10 माइल चल के स्कूल जाते थे. हमने ये सब सुना है, दादाजी लोग, हमारे फादर एंड एवरीबडी वुड से कि हम 10 माइल चल के स्कूल जाते थे. हम भी अब ऐसे स्टेज में पहुंच गए जो हम अपने बच्चों को कहेंगे कि यू नो, हमने 4 साल पढ़ाई की विदाउट चैट जीपीटी. सीरियसली, व्हेन यू से ओ यू नो, हम लोगों ने पढ़ाई की, पूरे एग्जाम्स दिए विदाउट चैट जीपीटी. और अभी जो ये सॉफ्टवेयर है उसका हिंदी कैसे पता होगा यार. पर हम हिंदी से कितने आगे निकल जा रहे हैं. वी आर रियली गेटिंग, वी डोंट नो, आई डोंट नो, आई जस्ट. और देखिए हमारे गूगल महाराज, हमारे चैट जीपीटी हमें तुरंत तुरंत बता देते हैं सही जवाब क्या है. सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग and it is on your fingertips. तो इन्होंने कहा सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर बता रहा है, तो चैट जीपीटी भी हिंदी के अलावा हिंदी को बता रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हिंदी में सॉफ्टवेयर लिख रहा है.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route. Rerouting.
2: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।